जब कोई कांवरिया महादेव को भोले बम रूप में पुकारता निहारता हुआ अग्रसर होता है, तब महादेव का मन प्रसन्नता से खिल उठता है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की यह पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमरीका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश

0: गया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है श्रीराम चरित मानस का। लीजिए सुनिए श्रीराम चरित मानस का भाग 47।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार।

सकारात्मक सोच न केवल रास्ता बनाती है बल्कि अंधेरे में उम्मीद की रोशनी भी जगाती है। यह वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी फिर से उड़ान भरना सिखा देती है। इस सुविचार के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा इस अंतराल के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म अक्सर से के और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गीत।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
6: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत केके की आवाज में फिल्म काइट से। बोल है नसीर फराज के और धुन दी है राजेश रोशन ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस से। समीर के लिखे इस गीत को गाया है सुनीति चौहान और के ने, और धुन है हिमेश रेशमिया की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 7 बजे है, कुछ बातें कुछ गीत होगा इस अंतराल के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: लीजिए प्रस्तुत है कुछ बातें कुछ गीत।
2: मैं जिंदगी

आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। रविवार सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं होता, ये वो दिन होता है जिसका इंतजार सोमवार से ही शुरू हो जाता है। बचपन में रविवार का मतलब था देर तक सोना, दिन में चिपक कर टीवी से कार्टून देखना, दोस्तों के साथ खेलना और अगले दिन की पढ़ाई की चिंता ना करना। फिर बड़े हुए और रविवार बदल गया। अब रविवार में आराम से ज्यादा अधूरे काम शामिल होते हैं। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी ऑफिस की तैयारी, कभी वो फोन कॉल जो पूरे हफ्ते नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद रविवार आज भी हमारे लिए खास है। क्योंकि यही वो दिन है जब हम थोड़ी देर के लिए अपनी भागती हुई जिंदगी से थोड़ा सा ठहर कर मिलते हैं। यही वो दिन है जब चाय थोड़ी लंबी चलती है, बातें देर तक होती है और समय थोड़ा अपना सा लगता है।

और फिर भी हर रविवार के अंत में एक एहसास रह जाता है, यार ये संडे, ये रविवार इतना जल्दी खत्म हो गया। आज बात करेंगे उस अधूरे रविवार की जो हर हफ्ते आता है, कुछ खुशी देता है, कुछ सुकून देता है और कुछ अधूरापन छोड़ जाता है, और सुनेंगे कुछ गीत। बचपन वाला रविवार। एक समय था जब रविवार सबसे लंबा दिन लगता था। सुबह जल्दी उठने की कोई मजबूरी नहीं होती थी, स्कूल बैग का कोई तनाव नहीं होता था। मोहल्ले की गली में क्रिकेट, छत पर पतंग और दोपहर में टीवी के सामने पूरा परिवार होता। उस रविवार की सुबह

की खुशबू ही अलग होती थी। रसोई से आती पराठों की महक, अखबार पढ़ते पिताजी और छुट्टी की राहत। उस समय रविवार को घड़ी देखकर नहीं जिया जाता था। वो रविवार बस बहता रहता था और हमें पता नहीं चलता था। शायद इसीलिए आज भी बचपन के उस रविवार को सबसे खूबसूरत यादों में शामिल किया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम नहीं, फिक्र कम थी।

0: ना
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। हम बात कर रहे थे रविवार की। दोस्तों, देखा जाए तो समय के साथ रविवार का मतलब भी बदल गया है। अब छुट्टी का दिन आराम से ज्यादा जिम्मेदारियों का दिन बन गया है। कपड़े, बाजार, बिल, घर के तमाम छोटे बड़े काम और बीच बीच में थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालने की कोशिश। कई बार पूरा रविवार निकल जाता है और शाम को लगता है आज तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन शायद यही जिंदगी का दूसरा अध्याय है जहां खुशियां बदल जाती है लेकिन उनकी अहमियत नहीं। अब खुशी देर तक सोने में नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर चाय पीने में मिलती है। अब रोमांच छुट्टियों में नहीं बल्कि 2 घंटे बिना किसी चिंता के बैठ पाने में होता है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कुछ लोग, कुछ मुलाकातें। रविवार का एक चेहरा और भी होता है। कुछ लोगों के लिए ये परिवार का दिन होता है, कुछ के लिए दोस्तों का और कुछ के लिए सिर्फ अपने साथ बैठने का। कभी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, कभी परिवार के साथ खाना खाना, कभी घंटों तक चलने वाली बातचीत, ऐसे पल पूरे सप्ताह की थकान को चुपचाप कम कर देते हैं। और शायद तभी हमें ये समझ आता है कि खुशी हमेशा बड़े चीजों में नहीं, अक्सर साथ बैठकर बिताए गए समय में होती है, उन लम्हों में होती है। कभी रविवार की दोपहर पुरानी यादों का विषय बन जाता है, तो कभी शाम तक हंसी मजाक का सिलसिला चलता ही रहता है। और यही तो वो पल है जो रविवार को खास बनाते हैं, क्योंकि इंसान को सिर्फ आराम नहीं, अपनों का साथ भी चाहिए होता है।

रविवार की शाम। ये शाम जो होती है, इसका एक अपना अलग सा एहसास होता है। सूरज ढल रहा होता है और मन को याद आ जाता है कि कल फिर सोमवार है। बचपन में भी ऐसा ही लगता था और आज भी ऐसा ही लगता है। कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, और शायद इसीलिए रविवार की शाम थोड़ी सुंदर भी होती है और थोड़ी उदास भी। वह हमें यह याद दिलाती है कि अच्छे पल हमेशा नहीं रुकते, लेकिन वो लौट कर जरूर आते हैं। कई लोग इस समय अगले इस हफ्ते की तैयारी कर रहे होते हैं और कई लोग बस बालकनी में बैठकर ढलती हुई शाम को देखते हैं। रविवार की शाम शायद उम्मीद और जिम्मेदारी के

बीच का पुल है। इस पुल के जहां एक तरफ बीता हुआ आराम है और दूसरी तरफ आने वाला नया सप्ताह।

अधूरापन भी जरूरी है। अगर हर रविवार पूरा हो जाए तो शायद अगले रविवार का इंतजार ही ना रहे। कुछ अधूरे काम, कुछ अधूरी बातें और कुछ अधूरी योजनाएं, यही तो वजह है कि हम अगले हफ्ते की उम्मीद करते हैं। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। सब कुछ कभी पूरा नहीं होता, लेकिन शायद हर अधूरेपन में एक नई शुरुआत छुपी होती है। और हर रविवार हमें यही सिखा कर जाता है कि रुकना जरूरी है, लेकिन रुक जाना नहीं। जो काम आज नहीं हुए वे अगले रविवार हो जाएंगे, जो बातें आज नहीं हो पाई वो किसी और दिन हो जाएगी, लेकिन उम्मीद वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी का सफर पूर्णता से नहीं, लगातार चलते रहने से खूबसूरत बनता है।

0: रविवार की खूबसूरती शायद इसी बात में है कि वह कभी भी पूरा नहीं लगता। हर बार कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, किसी से मिलना, कहीं जाना, कुछ कहना, तो कभी कुछ सुनना भी। लेकिन शायद यही अधूरापन अगले रविवार की उम्मीद बन जाता है। तो अगर आज आपका रविवार भी थोड़ा सा अधूरा रह जाए तो परेशान मत होइएगा। कुछ बातें अगले हफ्ते के लिए भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां एक दिन में पूरी नहीं होती। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत।
1: मैं जिंदगी

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार व उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद

0: मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है।

0: सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य

0: महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कम्पेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रूपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13%.

0: जी अंशुताओं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन एक चीज तो आपके हाथ में है, किसी को दुख न पहुंचाना। ये जब हमारे हाथ में है तो इस बात को तो हम पूरा कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात के साथ कर दिया है आगाज आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का।
1: श्रोताओं, इसी के साथ अब कार्यक्रम में बात करते हैं टीम परिचय की। तो ट्रांसमीटर से हमारा साथ दे रहे हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख।
0: और श्रोताओं, टीम में कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार। अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं शुभम और एफएम पर हमारे साथ हैं सोनिया देवड़ा।
1: नमस्कार, प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने। और इसी के साथ श्रोताओं, इन सभी के साथ सूत्रधार के रूप में मैं हूं सूफिया खान।
0: और श्रोताओं, मैं हूं सीमा शर्मा।

श्रोताओ, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई का जो दिन है बहुत कुछ अपने साथ लेकर आया है और क्या क्या आज के दिन के इतिहास में दर्ज है, आइए जान लेते हैं।

0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि लंदन में आखिरी बार ट्रॉम जो है वो कब चलाई गई थी? जी हाँ, ये आखिरी बार चलाई गई थी 5 जुलाई और सन था 1952।
1: और साल 1996 की भी बात कर लेते हैं। आज के दिन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने क्लोन से पैदा की थी डॉली भेड़। वैज्ञानिक जगत के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी श्रोताओं, और इसे 7 महीने बाद यानी 22 फरवरी 1997 को दुनिया के सामने लाया गया था।

0: साल 2004 में आज के दिन ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया था। आज के दिन
1: श्रोताओं, जब बात चली है स्पोर्ट्स की, तो आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। उन्होंने एंडी रॉडिक की को रोमांचक मुकाबले में हराया था। और दिन क्या था? जी हाँ, बात हो रही है 5 जुलाई की, और सन था 2009।

0: और श्रोताओं, अब आगे भी बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आज बात करते हैं जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जी हाँ, आज 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना में जन्मी पीवी सिंधु का जन्मदिन है। आपको बता दें श्रोताओं कि लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो। रियो ओलंपिक 2016 में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया। और बात करें 2020 के टोक्यो ओलंपिक की, तो उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी ये स्वर्ण पदक जीतने वाली।
1: श्रोताओं, पीवी सिंधु के माता पिता जो हैं दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के पिता का नाम पीवी रमना, जिन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, और जो माँ थी वो भी विजया, वो भी प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर पीवी सिंधु का जो रुझान है वो बैडमिंटन की तरफ क्यों हुआ। जी हाँ श्रोताओं, सिंधु ने 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। दरअसल माता पिता दोनों जो थे वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन पीवी सिंधु का जो रुझान था, जो लगाव था, वो बैडमिंटन की ओर हुआ पुलेला गोपीचंद की सफलताओं की वजह से। वो उनसे उतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना करियर भी बैडमिंटन में चुन लिया।
0: और श्रोताओं, इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए खेल के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जैसे राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।

और श्रोताओं, जयंती विशेष पर आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध तैराक रहे सचिन नाग जी को। 5 जुलाई 1920 को जन्मे सचिन नाग ने साल 1951 के पहले एशियाई खेलों में इन्होंने तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता था श्रोताओं। और 1951 में एशियन गेम्स में 300 मीटर मेडले रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। बात की जाए 1948 और 1952 के ओलंपिक में उन्होंने वाटर पोलो टीम के ये सदस्य रहे थे। और श्रोताओं, साल 1987 में इनका निधन हो गया था।

श्रोताओं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जौनपुर की माटी के लाल प्रख्यात डीएनए वैज्ञानिक डॉक्टर लाल जी सिंह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी जीवनी युवाओं की रोल मॉडल है। उन्हें भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है। फॉरेंसिक साइंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। श्रोताओं, उनका जीवन सतत विकास यात्रा का एक ऐसा दर्पण है जो समय समय पर लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना है। ग्रामीण परिवेश से निकले इस मेधा ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जौनपुर के सिकरारा विकास क्षेत्र के कलवारी गांव में इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1947 को।

बिल्कुल श्रोताओं, और लालजी सिंह जी की बात करें तो उन्होंने आणविक आधार पर लिंग परीक्षण, वन्य जीव संरक्षण, फॉरेंसिक और मानव प्रवास पर काफी काम किया था, और 10 दिसंबर 2017 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।

श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और आप जानते हैं कि यहाँ हम रुकते हैं न्यूज ब्रेक के लिए। आपसे फिर मिलेंगे प्रोग्राम में 9:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं

0: कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रूपये से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कल उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला, फतह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ

0: बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
1: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जला भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।

श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं आज प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिनके योगदान को भारतीय सिनेमा कभी भुला नहीं पाएगा। हम बात कर रहे हैं बी एन सरकार की। 30 के दशक में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी श्रोताओं, और इसके बैनर तले उन्होंने दो मूव फिल्मों का निर्माण किया। फिल्में थी चासर में और चोर कांता, और इनके द्वारा जो निर्मित हिंदी फिल्में हैं, अगर उनके बात करें तो उनमें है विद्यापति, बड़ी दीदी,

श्रोताओं, 5 जुलाई 1931 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे शरद पगारे, जी हां, हिंदी साहित्य का जाना माना नाम। इन्होंने अपना जीवन ही इतिहास की रूमानी कथाओं के नाम कर दिया। उनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो गंधर्व सेन, गुलारा बेगम, उजाले की तलाश, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह अगर हम देखें तो संध्या तारा, एक मुट्ठी ममता, नारी के रूप, भारतीय इतिहास की प्रेम कहानियां हैं। जी हाँ, 5 जुलाई अपने साथ बहुत सारी शख्सियत जो हैं उनको साथ लाई है। प्रोग्राम में आगे सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा, राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे अनुग्रह नारायण सिंह जी को। इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माताओं का जनक माना जाता है और इन्हें कहा भी जाता है आधुनिक बिहार के निर्माता। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के कार्यों में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। साथ ही इन्होंने महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। बिल्कुल अपने सबसे रोमांचक नॉकआउट चरण यानी राउंड ऑफ 16 में है, और जहां 48 में से अब केवल चुनिंदा टीमें जो हैं वो बची है। और अभी तक की बड़ी अपडेट्स की अगर हम बात करें फीफा विश्व कप की, तो आज सुबह ही फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। और आज रात के महामुकाबले की बात करें यानी भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से देर रात, तो वो होगा ब्राज़ील बनाम नॉर्वे और मेक्सिको बनाम इंग्लैंड के नॉकआउट मैच जो हैं वो खेले जाएंगे।

सत्यगा तेजगा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: श्रोताओं, आज संडे है और आपको रहता है जिस स्पेशल सेगमेंट का इंतजार, वो है मेहमान का रविवार। तो बिल्कुल है तैयार आज का मेहमान का रविवार। और खास हो जाता है आज का मेहमान का रविवार क्योंकि आज श्रोताओं बात फोन से नहीं होकर बातें होंगी लाइव। जी हाँ, आज की जो हमारी शख्सियत है वो है हमारे साथ स्टूडियो में और जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा, अनुशासन और युवा सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। जी हाँ श्रोताओं, आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका संपूर्ण जीवन जो है इतनी तरह तरह की जो विधाएं हैं उनमें समर्पित रहा है। भारतीय सेना में लगभग 39 वर्षों तक उत्कृष्ट सेवा देने के बाद भी जिनकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और समाज के प्रति समर्पण आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह मानव जी। डॉक्टर बलदेव सिंह मानव जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: बिल्कुल आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका।
0: सर, जो मेहमान का रविवार है, हमारे श्रोता जो हैं बहुत इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का। और एक सैनिक होने के साथ साथ श्रोताओं, आपको मैं बताऊं कि आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रेरक वक्ता, लेखक और आजीवन विद्यार्थी भी हैं। शिक्षा में डॉक्टरेट, मानवाधिकार में एमफिल, अनेक उच्च शैक्षणिक उपाधियां और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान उनकी बहुआयामी प्रतिभा जो है उसका

0: परिचय देते हैं। देश विदेश के विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके 500 से अधिक प्रेरक व्याख्यान अनगिनत युवाओं के जीवन में नई दिशा और नया आत्मविश्वास लेकर आए हैं। तो आप समझ गए हैं कि आज की जो हमारी शख्सियत है उनके रविवार के बारे में जानने के लिए आप हम सभी बहुत उत्सुक हैं। तो सर, ये जो मेहमान का रविवार जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आप जैसी शख्सियत के रविवार को स्पेशल क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में जानें। तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरीके से आप अपने संडे को स्पैन करते हैं।
1: यस सीमा जी, आपने बहुत ही एकदम अच्छा सवाल पूछा। जो लोग हम इस प्रकार की सरकारी सेवा के अंदर में, जैसे पहले हम सेना में थे और अभी सेना के रिटायरमेंट के बाद में राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर में, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ, तो सरकारी सेवा के साथ साथ में संडे जो होता है हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है, जिसके अंदर में हम उन सरकारी सेवाओं की जो ड्यूटी होती है उसको छोड़ करके अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, दोस्तों के प्रति, जो एक हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से रेस्ट एंड रिकूप का डे भी है और ये एक तरह से हमारे जो नीर एंड डियर के साथ में कनेक्ट होने का भी डे है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके साथ साथ में मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जैसे एक है नारायणपुर यूथ सोसाइटी, जो यूथ सोसाइटी अपना काम करती है इस एक प्रकार, और दूसरा हमारा एक खुद का, हमारे पिताजी के नाम से हम एक एनजीओ बना रखा है, नैनजी फाउंडेशन ट्रस्ट।
0: अच्छा।
1: और एक हमारे पास में, हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव है बम्बोर, वहां पे एक रक्तवीर मानव सेवा समिति बनी हुई है। तो तीन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके जो अपनी फैमिली और दूसरे कामों को जब हम कर देते हैं तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम करने होते हैं वो भी हम मोस्टली संडे को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उन दिनों के अंदर में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी संडे को ही थोड़ा टाइम मिल पाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। बच्चे हमारे दिल्ली में रहते हैं, मेरे सन डॉटर बोथ एंड मेरे जो नेफ्यूज हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी कनेक्ट होना होता है तो भी संडे को हो पाते हैं।
0: एक प्रॉपर उनको भी गाइड करना जरूरी है सर, तो वो गाइडलाइन आप संडे को जो समय है उसमें देते हैं।
1: यस, वो देते हैं। माता जी हैं हमारे, अभी पिताजी का तो स्वर्गवास 2023 में हो गया था, पर माता जी के साथ बैठते हैं, भाई के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, कभी कभार बहनों को समय होता है तो उनको बुला लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: कभी कभी कभार हमारे और जो नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं उनको बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप परिवार के अंदर में मेल मिलाप और प्यार बढ़ा सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो आज की दुनिया बहुत मेटलिस्टिक होती गई है और समाज के अंदर में जो है ईर्ष्या द्वेष वगैरह बहुत ज्यादा पनपता जा रहा है, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, तो ये एक ऐसा दिन है कि हमको एक प्यार जो है वो बढ़ाना चाहिए, वो सही विद इन फैमिली मेंबर हो, विद इन सोसाइटी हो, विद इन फ्रेंड सर्कल हो, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और वो जिंदा रहेगा, वो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, खुशी रहेगी, खुशियाँ, खुद खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे और तभी से आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा और वही हमारी एक मानव जीवन की सार्थकता है कि यदि अल्टीमेट एम हर एक आदमी का खुश रहना होता है और हम पैसे कमाते रहें, अपने काम में डूबे रहें और खुश नहीं अपने आप को कर सके तो फिर
0: जीने का भी मतलब नहीं,
1: पैसे का भी मतलब नहीं है और जीने की भी कोई सार्थकता नहीं होती है। तो वो इस प्रकार के काम हम करते हैं। पर्यावरण मुझे बहुत प्रेम है तो पर्यावरण के प्रति भी किसी प्रकार का, या किसी कोई संगठन कोई मेरे को बुलाना चाहता है तो काफी जगह भी बुलाते हैं, तो उनको भी कहता हूँ कि भाई आप मेरे वर्किंग डेज के सिवाय संडे को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो तो मेरे लिए आना इजी रहता है। तो इस प्रकार से एक वर्क और फैमिली लाइफ के बीच में जो बैलेंस करना होता है, सोशल लाइफ के साथ में जो बैलेंस करना होता है, संडे मेरे लिए वो बैलेंस करने का दिन होता है।
0: क्या बात है सर, बहुत मतलब कहते ना कि क्वेश्चन जो था सिर्फ एक लाइन का था, लेकिन आपने जिस तरीके से हर स्टेटमेंट में एक पॉजिटिविटी झलक रही थी, आपने रिश्तों की बात की वहाँ भी बहुत पॉजिटिविटी थी, आपने एनवायरनमेंट की बात की, आपने अपनी अवेलेबिलिटी की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस आप बना रहे हैं सोशल लाइफ के और वर्किंग को लेकर के

0: ये बिल्कुल हमारे जो श्रोता हैं इस चीज़ से खुद भी इसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सर श्रोताओं, आपको बताऊं, हमारे साथ कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव हैं। तो सर यहाँ ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ, ये जो आपके नाम के साथ एक उपनाम जो मानव लग रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ बताएं उन्हें।
1: जी जी मैम, बिल्कुल आपने सही आइडिया लगाया कि जनरली मानव टाइटल होता नहीं है।
0: जी
1: किसी का जाति के ऊपर टाइटल होता है, किसी का धर्म के ऊपर मैं होता है, या अलग अलग
0: जी
1: जो जिस प्रकार के टाइटल होते हैं
0: जी
1: वो लगाते हैं। बट मैं शुरू से पढ़ने में ठीक था मैम,
0: अच्छा,
1: और किताबें पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा
0: पसंद
1: लगता
0: है
1: है,
0: आपको।
1: बहुत पसंद है।
0: जी
1: तो किताबें पढ़ते पढ़ते मेरे को और प्रकृति के प्रति प्रेम हो गया।
0: हाँ जी
1: तो मैंने ये सोचा कि जो प्रकृति है ये ओरिजिनल है, और हम सभी को अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करके जीना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: जैसे प्रकृति का एक छोटा सा उदाहरण दूं, प्रकृति में सूर्य है, ये धूप देता है तो पूरे के पूरे सब लोगों को देता है। वो धर्म, जाति, रीजन या
0: जी,
1: कंट्री या किस प्रकार के, किसी के
0: कोई
1: साथ में
0: भेदभाव
1: कोई
0: नहीं
1: भेदभाव नहीं
0: करता।
1: करता।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हवा चलती है तो
0: जी,
1: सबके लिए चलती है,
0: बिल्कुल
1: और बारिश आती है तो सबके लिए
0: सबके लिए
1: आती
0: आती है।
1: है,
0: बहुत बढ़िया
1: पेड़
0: कहा आपने।
1: ऑक्सीजन देते हैं तो सबको देते
0: जी
1: हैं। तो हमको, हम जब ईश्वर के घर से, जब धरती के ऊपर में एक मानव के रूप में, इंसान के रूप में ही सबसे
0: जी
1: पहले पैदा हुआ है,
0: बिल्कुल
1: वो ही हमारी एक ओरिजिनलिटी है, और वो मानवता जिंदी रहेगी तभी इंसान ही जिंदे रह पाएंगे।
0: क्या बात है सर।
1: मानवता यदि जिंदा नहीं है तो इस धरती के ऊपर में कैओस आ जाएगा, और हम जो है, जो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए
0: जी
1: वो एनवायरनमेंट नहीं रह पाएगा।
0: क्या बात है सर, मतलब जो आप कह रहे हैं वो दिमाग में एक एक शब्द जो है इस तरह से छप रहा है, और सुन के, और कहते ना कि दिल के बहुत करीब जो बात थी बिल्कुल स्पष्ट और रियल बात थी,
1: यस मैम,
0: और जब उसको अपन ने अपने अंदर भी लिया तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव हमारा भी आपकी बातों के साथ होता जा रहा है सर। सर ये जो आपने अपने टाइटल की बात बताई, सच में बहुत ग्रेट चीज़ थी और बहुत ही अच्छी चीज़ थी। हमारे श्रोता एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे आप एक सैन्य अधिकारी के तौर पर आपने कार्य किया है सर,
1: जी मैम,
0: और श्रोताओं आपको मैं बता दूं सर के बारे में कि मद्रास रेजिमेंट से आपने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की थी सर,
1: हाँ जी मैम,
0: और वहाँ से आपने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी, और श्रोताओं एनसीसी की जो बटालियन है उनका आपने सफल नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है
1: जी मैम,
0: उसके लिए आपने कैडेट्स को ट्रेन किया। नेपाल में सार्क युवा विनिमय कार्यक्रम हुआ था,
1: हाँ, यूथ एक्सचेंज
0: यूथ
1: प्रोग्राम होता
0: एक्सचेंज
1: है।
0: प्रोग्राम, यस सर,
1: यस मैम,
0: उसमें भारतीय युवा दल का आपने नेतृत्व किया था, और ये करके आपने देश का गौरव बढ़ाया था। और श्रोताओं हजारों युवा जो हैं आपके अपने व्यक्तित्व निर्माण में सर को रोल मॉडल मानते हैं। तो सर ये जो यूथ के प्रति आपका प्रेम है,
1: जी मैम,
0: तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या हमारी यूथ से आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे।
1: मैम आप हल्का सा, मैं आपको करेक्शन करना
0: जी
1: चाहूँगा इसके
0: जी
1: अंदर में।
0: बिल्कुल
1: मैं मद्रास रेजिमेंट में जब ज्वाइन किया तो मैंने एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन किया,
0: ओके जी
1: बट
0: जी जी
1: मैंने इनिशियली जो ज्वाइन किया था वो आर्मी एजुकेशन कोर में ज्वाइन किया था।
0: अच्छा
1: आर्मी
0: जी जी जी
1: एजुकेशन
0: जी
1: कोर में सर्विस करने के बाद मैंने फिर कमीशन लिया,
0: अच्छा
1: वो एक कमीशन ऑफिसर बना।
0: जी सर
1: तो वो, मैं एक जवान था और मैं आर्मी एजुकेशन कोर में एक जवान के तौर पे, एक टीचर के तौर पे
0: आपने
1: हम
0: लिया
1: सेना में
0: था।
1: ज्वाइन किया।
0: जी सर
1: तो वहाँ हमारे पास लाइब्रेरी होती है एजुकेशन कोर के पास में,
0: राइट
1: तो मेरा पढ़ने में पहले से
0: पहले
1: ठीक
0: से
1: था, और
0: आपका
1: मेरा लाइब्रेरी एक अच्छा रिसोर्स मिल गया जिसके अंदर में
0: जी
1: कोई पैसा ही खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट हो गया, और
0: और वो
1: मैंने
0: क्या।
1: हायर सेकेंडरी करके गया था यहाँ से।
0: जी
1: आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, तो हायर सेकेंडरी करके मैंने फौज ज्वाइन कर ली। बट वहाँ जाने के बाद में मैंने एजुकेशन कंटिन्यू की, और एजुकेशन कंटिन्यू करते करते, जैसा कि आपने बताया, मैंने तीन
0: जी
1: चार सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की, पांच सब्जेक्ट में पीजी डिप्लोमाज
0: जी
1: किए,
0: सर,
1: एम फिल की,
0: एम फिल किया,
1: डॉक्टरेट भी एजुकेशन
0: डॉक्टरेट
1: में
0: भी आपने
1: की।
0: एजुकेशन में किया,
1: तो
0: राइट।
1: मेरे को ये, मतलब एक महसूस हुआ कि महसूस, और वो एक रियलिस्टिक भी है जो
0: जी
1: कि
0: सर
1: अखबारों से पढ़ते हैं या इधर टीवी में देखते हैं, कि यूथ किसी भी कंट्री का,
0: जी सर
1: वो उस कंट्री के लिए एक बैकबोन होता है।
0: बिल्कुल
1: मतलब जैसा आज का यूथ है, कल की सोसाइटी वैसे ही होगी।
0: जी
1: आज वो दिखने के लिए यूथ है, बट कल का वो डिसीजन

0: मेकर है।
1: राइट सर, बिल्कुल
0: और एक बड़ी मतलब स्पष्ट बात है ये कि क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट फैमिली और सोसाइटी, कंट्री या किसी का भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है दी क्वालिटी ऑफ पीपल,
1: पीपल,
0: जो लोगों
1: राइट,
0: की क्वालिटी कैसी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: उसके ऊपर निर्भर करती
1: बहुत
0: है।
1: सही सर,
0: तो अब लोगों की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है कि उन लोगों ने किस प्रकार की तालीम हासिल की या किस प्रकार का माहौल मिला उनको, या उन्होंने किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप किया, या
1: जी
0: उस प्रकार की किस प्रकार की धारणा के साथ में वो बड़े
1: बड़े
0: होते
1: हुए
0: हैं,
1: हैं,
0: कंसेप्ट डेवलप करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए मेरे को लगा कि यदि मैं एजुकेशन, मेरी एजुकेशन को सही तरीके से,
1: जी,
0: सार्थक तरीके से सोसाइटी में यूज करना चाहूं, मैं सोसाइटी को पे बैक करना चाहूं, मैं
1: जी सर,
0: कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, तो मुझे यूथ को टारगेट करना
1: क्या
0: चाहिए।
1: बात है, बिल्कुल
0: और इसलिए मैंने यूथ के प्रति जो हुआ, मेरा एनसीसी में पोस्टिंग भी लकीली हो गया, जहां पे यूथ के साथ ही डील करना
1: डील
0: होता है।
1: करना था,
0: तो मैंने 3 NCC बटालियन को कमांड किया,
1: जी
0: एक कश्मीर वैली के अंदर में थी,
1: जी
0: दूसरी बिहार झारखंड
1: बिहार
0: में थी,
1: झारखंड में थे,
0: और तीसरी जो मैं
1: जो
0: जस्ट रिटायरमेंट से जस्ट पहले 3 साल तक मैं जोधपुर के अंदर
1: जोधपुर
0: में
1: में ही
0: था।
1: था जी,
0: तो यहाँ बहुत सारे यूथ कांटेक्ट में आए, फिर यूथ कांटेक्ट में आए तो उनके साथ मैं वर्कशॉप वगैरह डेवलप किए, फिर जब एनसीसी के माध्यम से इतने सारे स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स के साथ में ऐसे जान पहचान हो गई, तो
1: जी
0: अलग अलग स्कूल्स के अंदर में इन्विटेशंस मिलते रहे, तो वहाँ जा करके वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट
1: जी
0: करता, उनका पर्सनल डेवलपमेंट करता रहा, उनके एटीट्यूड के ऊपर मैं काम करना, इंटरेस्ट कैसे वो करें। तो ये एक मैंने पाया है कि यदि हमको मतलब कंट्री को बहुत बढ़िया कंट्री बनाना है,
1: जी सर
0: कंट्री को एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री बनाना है,
1: जी,
0: तो हमको आज के यूथ के ऊपर में फोकस करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी पैसे के पीछे भागती जा रही है, हम पूरे पूरे लोग मेटलिस्टिक बन गए हैं,
1: जी,
0: और हम अच्छा इस प्रकार की कोई भी चीज़ें होती है तो हर सोसाइटी में, एक सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में कहीं न कहीं किसी किसी के ऊपर में कहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कहीं
1: जी
0: कास्ट के ऊपर में है, रिलीजन के ऊपर में है, कहीं अपर थर्ड है, कहीं पे काले गोरे का भेदभाव है। तो इसके अंदर में हम अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज को यदि सही मायने के अंदर में सही एटीट्यूड डेवलप करवा करके सबके भले के अंदर में अपने भले वाला यूथ
1: जी
0: तैयार कर सकें, जो सबके लिए काम कर सकें, तो
1: बिल्कुल
0: मैं समझता हूँ कि कंट्री बहुत मजबूत
1: मजबूत
0: होगी।
1: होगी
0: हम एक मिलिट्री के अंदर में कहावत है मैम
1: जी सर,
0: कि इट इज़ नॉट मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल,
1: राइट राइट
0: मतलब मशीनों से युद्ध नहीं
1: जी
0: जीता
1: जी
0: जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो युद्ध जो जीता जाता है वो उसके मशीन के पीछे जो एक सोल्जर, जवान, बहादुर
1: जवान
0: सिपाही बैठा हुआ
1: जी
0: है, वो उस वेपन को किस तरीके से उपयोग में कर रहा है,
1: कब
0: वो
1: कर
0: उसके
1: रहा
0: अंदर
1: है,
0: में कितनी बहादुरी है, उसके अंदर में क्या स्किल है, उसके अंदर में क्या उसका मतलब
1: IQ
0: वो
1: है,
0: उसका एक इंटेलिजेंस क्या है कि वो किस जगह पे कितना वेपन यूज
1: राइट,
0: करे, कहाँ पे उसको चलाए,
1: बिल्कुल
0: उसी के ऊपर में युद्ध के अंदर में निर्णायक
1: निर्णायक
0: मोड़
1: होता
0: आती
1: है,
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो अब इसे हम मिलिट्री के अंदर में हमेशा कहते हैं कि मैन बिहाइंड दी वेपन, इसका मतलब मैन कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है,
1: ह्यूमन राइट,
0: मानव संसाधन है।
1: बिल्कुल
0: तो मानव संसाधन जिस कंट्री का बेटर होगा वो कंट्री हमेशा प्रोग्रेस करेगी,
1: करेगी
0: और
1: करेगी
0: इसलिए मैंने यूथ को हमेशा टारगेट करता हूँ कि यूथ के अंदर में उसके एटीट्यूड को, बुजुर्गों के बजाय उसको एटीट्यूड को, या उसकी फॉर्मेटिव एज होती
1: जी
0: है
1: सर,
0: उसके उसके अंदर में उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, इसलिए
1: बिल्कुल
0: उनको टारगेट करता हूँ।
1: सर, अप्रोच जो आपने दी है बहुत ही तगड़ी है और बिल्कुल सटीक है। और श्रोताओं, हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव सर। यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं आपको, दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है
0: जी जी मैम
1: क्योंकि जितनी बातें आपने कही सर बिल्कुल सही, और बिल्कुल एक भी बात को हम नकार नहीं सकते हैं,
0: जी
1: एक भी
0: मैम
1: बात पे हम कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हम, लेकिन दिल ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो संडे है उसमें आपने यूथ को आपने जो है टारगेट किया, और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर आप खुद भी कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड पे लाने के लिए कुछ ना कुछ म्यूजिक का भी सहारा लेते हैं,
0: जी मैम
1: तो क्या यूथ को भी मोटिवेट करने के लिए कोई सॉन्ग आपके दिल में आता है, या कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो?
0: ये जो हम सब भारतीय हैं, एक एनसीसी का सॉन्ग है जो
1: जी जी
0: एनसीसी
1: जी
0: के कैंप के अंदर में हम बार बार बजाते हैं और उनको गाना सुनाते हैं बच्चों को, कि
1: जी
0: उनके अंदर में भारतीयता का और
1: भाव
0: एक
1: जो है वो
0: भाव जागृत
1: जागृत हो।
0: हो,
1: जी
0: और भारतीयता का भाव जागृत होगा तो भारतीयता का भाव वसुदेव कुटुंबकम वाला भाव
1: क्या
0: है,
1: बात है, क्या बात
0: और
1: है।
0: हम

0: पूरे वर्ल्ड के साथ में, पूरे एनवायरनमेंट के साथ में, सोसाइटी के साथ में, सोसाइटी के सब तबकों के साथ में तालमेल करके नेशन को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं,
1: जी
0: वो गाना मेरे को बहुत ही प्यारा है।
1: सर, इस गीत के नाम से ही आपके चेहरे पे जो मुस्कान आई है, उस मुस्कान को थोड़ी देर और रहने देते हैं, और ये जो गीत जो आपके दिल के करीब है, थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं और आपको भी।
0: बिल्कुल।

0: मेहमान का रविवार में, जो हमारे साथ शख्सियत हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव। और बातचीत चल रही है, श्रोताओं आप सुन रहे हैं, अभी आपने उनके पसंद का गीत भी सुना और कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था। जब अपन ऐसे सॉन्ग सुनते हैं सर, तो दिल में ना वो एकदम से कहते रोंगटे भी खड़े होते हैं और दिल में वो एक अलग ही भाव आ जाता है,
1: राष्ट्र प्रेम,
0: राष्ट्र प्रेम जी,
1: नेशन फर्स्ट,
0: नेशन फर्स्ट। सर आपके जो हमने और भी चीज़ें सुनी हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि आप जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, यूथ को तो मोटिवेट करते ही हैं, आप सामाजिक कुरीतियों पे भी बहुत काम करते हैं। किस तरीके से नशा मुक्ति है, मृत्यु भोज है, इस तरह की
1: चाइल्ड मैरिज है,
0: इन पर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो हमारे श्रोताओं को बताएं इस बारे में।
1: हाँ जी मैम, मैं हमारे खास करके

0: इस बारे में?
1: हाँ जी मैम, मैं हमारे खास करके ये जो वैसे तो पूरे भारत के अंदर में ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर में डिफरेंट तरह की कुरीतियाँ होती हैं,
0: जी.
1: बट हमारा दायरा इतना बड़ा तो नहीं है मैम, बट हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है जिसके अंदर में जो दो तीन कुरीतियाँ जैसा कि आपने अभी बताया,
0: हाँ जी,
1: एक चाइल्ड मैरिज है कि ये नशा
0: नशा
1: की जो
0: मुक्त.
1: प्रवृत्ति,
0: हाँ
1: अफीम
0: जी
1: वगैरह
0: जी जी जी
1: जो रेवान करते हैं या
0: हाँ
1: मनोहार करते हैं
0: जी.
1: वो है, और मृत्यु भोज है।
0: मृत्युभोज.
1: अब इसके लिए फिर मैं जब इस प्रकार की चीज़ें, जो मैं बताया आपको कि जब पढ़ता था तो किताबों के माध्यम से ही और हमारे जितने भी प्रेरक थे उनके माध्यम
0: जी
1: से
0: सर.
1: हमें ये लगा कि मृत्यु भोज बहुत बुरी चीज़ है।
0: जी
1: मतलब अपन किसी की मौत हुई है और उसी जगह पे घर के अंदर में रोना धोना चल रहा है, वहाँ से बहन बेटी आती है तो उनका रो रो के बहुत बुरा
0: बुरा
1: हालत हो
0: हाल
1: जाता
0: है.
1: है
0: जी.
1: और घर के दहलीज पे आते आते वो गिर जाती है, लोग उनको उठा करके घर में मुश्किल से लेके
0: लेके
1: जाते हैं,
0: जाते हैं.
1: और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर में भी आप पास में बैठ करके आप हलवा पूड़ी खाते हो और पांच पकवान खाते हो और लड्डू खाते रहते हो, तो मुझे मतलब ये बहुत बुरा लगता
0: जी
1: है।
0: सर.
1: और मुझे लगता है कि हमारी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है
0: जी.
1: यदि हम इसके रोने धोने के ऐसे माहौल के अंदर में भी हम मीठा भोजन कर
0: मीठा
1: लेते
0: भोजन कर
1: हैं,
0: लेते हैं.
1: तो इसका मतलब हमारी मानवीय संवेदनाएं जीरो हो चुकी है, मर
0: सही,
1: चुकी है।
0: बिल्कुल.
1: हमें उस आदमी के दुख दर्द के अंदर में हमें कोई परवाह नहीं है, और वो बेचारा गरीब आदमी, गांव का आदमी,
0: जी.
1: कहीं का भी, मतलब वो उधार के पैसे ला करके वो बनवा रहा है क्योंकि उसके ऊपर में सोसाइटी का प्रेशर
0: सोसाइटी
1: है,
0: का प्रेशर है.
1: सोसाइटी का प्रेशर है,
0: बिल्कुल
1: वो कहीं ये सोच ले कि लोग क्या कहेंगे
0: जी.
1: या लोग ताने मारेंगे, कल तुम्हारे माँ बाप के पीछे कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, हमारा खा करके बैठ गए।
0: जी.
1: तो ये जो जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के
0: हाँ
1: अंदर
0: जी,
1: में
0: हाँ जी
1: ये खत्म होनी चाहिए,
0: जी सर.
1: और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सोसाइटी इस चीज़ को बैन कर दे
0: जी,
1: कि भाई
0: बिल्कुल.
1: मृत्यु भोज होगा ही नहीं। अच्छा, वो सोसाइटी लेवल के ऊपर में बैन करवाना मेरे अकेले के बस की
0: बस की
1: बात
0: बात
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है.
1: तो
0: राइट.
1: मैंने ये सोचा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो
0: जी.
1: पिछले 40 साल से
0: अच्छा.
1: मैं मृत्यु भोज नहीं
0: नहीं
1: खाता हूँ।
0: खाते हैं.
1: कहीं पर भी मौत होती है तो मैं किसी प्रकार का भोजन नहीं करता
0: नहीं
1: हूँ क्योंकि
0: रहता.
1: वहाँ मीठा बनता ही बनता है।
0: जी
1: अब मीठा भोजन होता है वो खुशी का प्रतीक होता है,
0: जी
1: कहीं पर भी कोई खुशी होती है तब मिठाइयाँ बढ़ती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और मौत जो है दुख है,
0: दुख है.
1: तो दुख के अंदर में मीठे भोजन का कोई औचित्य नहीं है,
0: राइट.
1: और वहाँ मौत के ऊपर में ये पैसे का जो घमंड दिखाने का कि मैं इतना पैसा और मैं इतना लोगों को बुला के खाना खिला सकता
0: जी
1: हूँ
0: जी जी
1: या मैं इतने पकवान बना करके लोगों को खिला सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये एक निरी मूर्खता है। पैसे का घमंड एटलीस्ट ऐसे दुख के टाइम के अंदर
0: बिल्कुल
1: में,
0: बिल्कुल.
1: शोक के समय तो पैसे का घमंड
0: नहीं
1: नहीं
0: करना है.
1: दिखाएं, तो वो बेटर होगा। तो मौत है, सादगी रहनी चाहिए, सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए। आए हमने किसी के साथ में दुख
0: दुख
1: दर्द
0: बांट
1: को
0: लिया.
1: बांट लिया और
0: जी
1: अपना वहाँ से जो भी चाय पानी होती है वो करके और
0: बिल्कुल.
1: उनको मतलब सांत्वना दे करके
0: सांत्वना
1: वहाँ
0: देके.
1: से निकल
0: जी.
1: गए। तो इसलिए पहले तो मैंने खुद ने खाना छोड़ा, फिर मेरी बारी आई, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 2023 में,
0: जी.
1: तो अब मैंने सोचा कि यदि हम मृत्यु भोज करते हैं तो आज तक तो मैंने खाया नहीं और इसके अगेंस्ट में मैं बोलता ही आया हूँ, इसके मृत्यु भोज के अगेंस्ट में मैंने कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश
0: जी
1: किए हैं
0: जी
1: अपने लिख
0: बहुत
1: करके,
0: सारे आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखे सर.
1: जी, तो
0: जी.
1: पब्लिश किया। तो हमारे घर के अंदर में मेरा छोटा भाई है,
0: हाँ
1: वो पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट है,
0: जी
1: तो भाई से बातचीत किया तो भाई मेरे साथ में रॉक सॉलिड खड़ा हो गया।
0: जी
1: उसने कहा कि भाई बिल्कुल ये एक कुरीति है, इसको यदि ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको हमारे घर से ही ख़त्म
0: शुरुआत
1: करनी
0: करनी
1: चाहिए,
0: पड़ेगी. बिल्कुल.
1: और मैं तो खैर बाहर सर्विस करता था 40 साल से, पर भाई तो गांव में रहता था तो भाई के लिए ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल
0: कठिन
1: था,
0: था.
1: कठिन
0: राइट.
1: था,
0: जी.
1: बट वो समझदार है और वो भाई मेरे मेरे को बहुत प्यार करता है,
0: जी सर.
1: सम्मान देता है, तो मेरी बातों को मान करके मेरे साथ में रॉक सॉलिड खड़ा हो गया और हमने मृत्यु भोज नहीं
0: नहीं
1: किया।
0: किया. क्या बात
1: मतलब
0: है.
1: जिस समाज के अंदर में, आसपास के अंदर में अफीम चल रहा हो, नशे चलते हो मौत के ऊपर
0: जी
1: में,
0: सर.
1: और वहाँ पे मिठाइयाँ बनती हो और उसमें एकदम बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं हो, तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरह से वो
0: हिला
1: अलग
0: देने
1: से
0: वाली बात हो गई
1: वहाँ हो जाती है। तो
0: सर.
1: 26 जनवरी
0: जी.
1: को, 2023 को जब हमने नहीं किया तो इसकी जो खबर है वो चारों तरफ में फैल गई।
0: जी जी जी
1: तो ये नशे के अगेंस्ट में भी काम करता हूँ और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में भी
0: चाइल्ड
1: लोगों से
0: मैरिज के.
1: बातचीत करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, स्कूल कॉलेजेस में
0: जी
1: जाता रहता हूँ।
0: सर. एक और, क्योंकि जो समय है वो आपकी बातें सुन के हम उसमें रवानी में बहते जा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और दिल में आ रहा है कि जिला सैनिक

0: कल्याण अधिकारी के तौर पर
1: जी मैम,
0: कर्नल बलदेव सिंह जी मानव जो हैं उन्होंने बहुत कार्य किए हैं,
1: तो बहुत तो नहीं किए ऐसा तो कुछ
0: इस
1: नहीं
0: बारे
1: है।
0: में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें आप।
1: हाँ जी मैम, मैं अभी मेरे को एक साल से और कुछ महीने हुए हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शेरगढ़ लगा हूँ। तो मेरा यही एक उद्देश्य रहता है कि रिटायर होने के बाद में गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है रिटायर्ड हमारे सैनिकों को, गौरव सेनानियों को, माताओं को, हमारी वीरांगनाएं हैं उनको, उनके आश्रितों को, उनकी सेवा करने का मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कुछ हो नहीं सकता है। और इसमें भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मीटिंगें लेता हूँ, हमारे यहाँ समस्या समाधान शिविर होते हैं, तो उसमें हर जगह में जाकर के यही कहता हूँ कि रिटायर्ड लोगों के पास में सोसाइटी को पे बैक करने का मौका
0: है।
1: रिटायर्ड लोगों के पास में खूब एक्सपीरियंस होता
0: जी
1: है।
0: सर, बिल्कुल।
1: और गांव के जो गौरव सेनानी हैं वो भी गांव के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने, वो गांव के स्कूल और कॉलेजेस को जाकर के फोकस करें, यूथ के ऊपर में फोकस करें, और गांव के दूसरे रिटायर्ड लोग जितने भी होते हैं या शहर के जितने भी होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, कोई साइंटिस्ट आया, कोई भी आया, तो रिटायर्ड लोगों के पास में 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को वापस सोसाइटी के अंदर में यूज करें और पे बैक करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि कंट्री का फ्यूचर बहुत ही बेटर होगा।
0: क्या बात है सर, मतलब रिटायर्ड लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। और ये सोच जो है, ये सोसाइटी को जो पे बैक करने वाली आपने बात कही है, रियली सर सैल्यूट
1: सोसाइटी का, हमारे ऊपर में प्रकृति का, सोसाइटी का, समाज का, पेरेंट्स का और सब लोगों का कर्ज है। ये कर्ज उतारने का मौका है।
0: बिल्कुल,
1: ये हम उनके ऊपर में काम करके किसी पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: क्या बात है। तो श्रोताओं, हमारे साथ मेहमान का रविवार प्रोग्राम में आज हमने इनवाइट किया कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव को। सर, आपसे जो ये बातें की, मन तो कर रहा है कि और करें, लेकिन समय की जो सीमा है वो हमें यहाँ रोक रही है। फिर आपसे मौका ज़रूर लेंगे कि आप आकाशवाणी में पधारें और अपने समय में से जो कुछ पल हैं वो हमारे साथ फिर से शेयर करें। और चलते चलते फिर से एक गीत जो है मैं आपसे सुनना दरखास्त करूंगी कि सिर्फ बोल ही बता दें ताकि हमारे श्रोता जो हैं उसे गुनगुना लें।
1: बिल्कुल मैम, वो हमारा सुभाष चंद्र जी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज के लिए जो गाना दिया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो गाना जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, उसको आप हमारे युवाओं को और श्रोताओं को सुना दें।
0: ज़रूर सर। तो हम उस गीत के साथ ही आपसे लेंगे अनुमति, क्योंकि जो समय है वो हो चला है। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10 बजे है। आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

जय हिंद बच्चों, चुनमुन सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं को नम्रता दवे का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आपकी मुस्कान आज सूरज की किरणों की तरह चमक रही होगी। अरे, आप तो ये सोच रहे होंगे कि दीदी आज इतनी तेज सूरज की किरणें नहीं दिख रही हैं। हाँ बच्चों।

खुशी का कारण भी तो यही है कि आखिरकार इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है, क्योंकि बारिश जो आई है, और कल भी बारिश आई थी, आज भी बारिश आएगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज तो है रविवार, और रविवार को बच्चों की होती है छुट्टी, और बच्चे इंतज़ार करते हैं किस कार्यक्रम का, चुनमुन कार्यक्रम का। बिल्कुल बच्चों, और दीदी लेकर आई है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, और उन बातों में क्या छुपा है पता है? जादू। हाँ बच्चों, एक अच्छा इंसान बनने का जादू, और दीदी बताएगी आपको कि एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, अपनी छोटी छोटी सी चीजें करके हम कैसे किसी और के मन में अपनी जगह बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी प्रार्थना के साथ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

तो बच्चों, आपने ये प्रार्थना सुनी, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? आपको पता है बच्चों, इन जो प्रार्थनाएं होती हैं ना, उनका भी एक अलग मज़ा होता है। हाँ बच्चों, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। और जब हमारा मन उदास होता है, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना, तब ये प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और आप दीदी तो ये बोलेगी कि ये जो प्रार्थनाएं हैं, जैसे जो हम सुबह भी करते हैं, जो हम असेंबली में जो हम प्रेयर्स करते हैं, बच्चों अगर आप समझेंगे और शांत दिमाग से कभी उन प्रार्थनाओं के बोल बोल पे अगर ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि सच में कितनी अच्छी बात कही है कि हम इसी बहाने से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और दीदी अब बात कर रही थी जादू की। कभी आपने ये सोचा है कि आंखें अगर बंद करें और अगर हम ये सोचें कि किसी इंसान के पास अगर ये होता तो क्या होता, और अगर अच्छा इंसान बनने की कोई पावर होती और वो हम में होती, तो हम फटाफट वो ले लेते, है ना? तो बच्चों, जो जादू की बात कर रही है ना दीदी, वो आपके पास है। हाँ, आपको पता है एक बच्चा था जिसको सॉरी बोलने में बहुत बहुत बहुत कष्ट होता था। जैसे अगर उसने कोई गलती कर ली है और उसको पता है उसने गलती करी है, उसने अपने दोस्त का दिल दुखाया है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी, उसके भैया सब लोग कह कह के थक जाते थे कि तुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो बच्चा तो मानने को तैयार ही नहीं होता था। फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों कि वो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था, लेकिन सॉरी बोलना तो उसके कोर्स में नहीं था। फिर बच्चों, एक दिन उसके एक और दोस्त ने कोई गलती की और उसने आके फट से बोल दिया कि मुझे माफ़ करना, मुझसे ये गलती हो गई थी, तुम्हारी पेंसिल मैंने गलती से ले ली थी, लेकिन अब मैं वापस दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं था तुम्हारे बैग में से लेने से पहले, तो मुझे माफ़ कर दो। उस दिन उस बच्चे को लगा कि सही में अगर हम अब कोई गलती करते हैं और अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। तो बच्चों, आपको पता है अगर आप कोई गलती कर भी लेते हैं, जैसे मम्मी या पापा से आपने कोई चीज़ छुपा भी ली है, तो क्यों ना एक छोटा सा शब्द ही तो है सॉरी। और उस सॉरी के बहुत अच्छे अच्छे कमाल होते हैं बच्चों। आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, अगर मम्मी ने कोई काम बोला है और आपने नहीं किया है, 2 मिनट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम बैठेंगे, अभी हम सोएंगे, ऐसे करते हैं ना बच्चों, तो ऐसे करना अब बंद करिए और मम्मी पापा को जाके सॉरी बोलिए कि आज के बाद हम डिसिप्लिन होंगे और आप जब भी बुलाएंगे हम तुरंत आ जाएंगे, है ना? ये तो हुआ एक जादू का शब्द। दूसरा जादू का शब्द है बच्चों, थैंक यू। भाई, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ना, आप फटाफट फटाफट खा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता तो फट से बोल देते हैं आज मज़ा नहीं आया, लेकिन क्या आपने ये बोला है कि वाह आज क्या खाना बना है, मज़ा आ गया, थैंक यू मम्मी, आपने कितना हमारे लिए एफर्ट डाले हैं। भाई, पापा आते हैं सुबह से और बच्चों को घूमने ले जाते हैं, क्या आपने उसके लिए भी धन्यवाद किया? बच्चों, ये जादुई शब्द हैं जो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं।

तो देखिए, जादू बहुत होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? सॉरी बोलना होगा, थैंक यू बोलना होगा, और क्या बोलना होगा बच्चों? आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। करेंगे ना बच्चों? तो दीदी आपको आगे और भी बहुत सारी जादुई बातें बताएगी।

0: पहले आओ ना।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: तो बच्चों, दीदी बात कर रही थी आपसे जादुई शब्द के बारे में। हाँ बच्चों, तो आपने सॉरी बोलना सीख लिया, थैंक यू बोलना सीख लिया, लेकिन अगर अपना काम कराना हो तो और क्या बोलेंगे। बिल्कुल, प्लीज अगर आप

प्लीज बोल के कोई भी काम कराते हैं तो देखिए आपका काम चुटकियों में हो जाता है। जैसे कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो अगर आप उनको बोलेंगे ये काम करना तो पानी पिलाना तो क्या होगा? वो बोलेंगे खुद ले लो, हम क्यों करें, है ना? और अगर आप बोलेंगे प्लीज एक गिलास पानी पिला दीजिए ना, तो उनको भी लगेगा कि इतनी इज्जत दे के बोल रहे हैं तो फिर हमें काम तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो इसमें भी एक जादू है। तो आपको प्लीज़ बोलना आना चाहिए बच्चों। और सब जब भी आप किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, अगर एक छोटा सा शब्द अगर आप काम में ले लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। आज दीदी आपको सुनाती है एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। हाँ बच्चों, ये कहानी है अनन्या की। एक बार अनन्या स्कूल जाती है और स्कूल में देखती है कि अभी जैसे नया सेशन शुरू हुआ है तो नए नए बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे नए एडमिशन्स आए हैं। सारे बच्चे आपस में घुल मिल के बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं और बदमाशियां कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी। तो अनन्या को लगा कि अरे ये मीरा चुपचाप क्यों बैठी हुई है। उसको ये चीज़ बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि सब अपने दोस्तों के पास थे और उसके पास कोई भी नहीं था, और वो चुपचाप दीवारों को देख रही थी, टीचर के आने का इंतज़ार कर रही थी, खाना भी उसने अकेले खाया। मीरा को ये बात अब अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो नई थी तो अब कर भी क्या सकती थी। तो अनन्या ने क्या कहा, अनन्या मीरा के पास गई और बोला कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो मीरा ने फट से कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बच्चों आपको पता है यही होता है एक सच्चा दोस्त, जिसको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। और आपको पता है बच्चों कि दूसरों की भावनाओं को जब हम समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। हाँ बच्चों, इसे हम कहते हैं एम्पैथी। इसका मतलब है बच्चों कि किसी की जगह खुद को रखकर सोचना, और अगर आपका दोस्त उदास है आप उसके पास बैठें, और कोई अकेला है तो आप उसका अकेलापन दूर कर सकते हैं। खाली आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों। हर जगह अगर आप उनकी भावनाएं समझ सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही बच्चों आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो मुस्कुराते रहिए और ये प्यारा सा गाना सुनते रहिए नम्रता दीदी के साथ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: तो बच्चों, आप सुन रहे हैं चुनमुन कार्यक्रम नम्रता दीदी के साथ। तो बच्चों, दीदी बात कर रही थी जादुई शब्द के बारे में। अच्छा, कल्पना कीजिए कि अगर आपके हाथ में एक जादुई मोबाइल आ जाए तो नन्हे मुन्नों के हाथ में अगर जादुई मोबाइल आ जाए और उसमें बहुत सारे गेम्स हों, तरह तरह के कार्टून्स हों और आप जो चाहें वो उसमें आ जाए तुरंत। लेकिन बच्चों, आपको मज़ा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जैसे हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं ना, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, सड़क पार करते हैं, तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो पुलिस अंकल आके पकड़ के ले

0: जाते हैं, है ना। तो वैसे ही बच्चों, इंटरनेट में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब जैसे कि अब आपके पास गेम्स और ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि आजकल के बच्चे, भाई चुनमुन सुनने वाले बच्चे भी स्मार्ट तो बहुत हैं, लेकिन बच्चों सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। अगर इंटरनेट पे आपको कोई मैसेज आता है कि ऑनलाइन आपको कोई मैसेज कर रहा है कि आपने ये गेम जीत लिया है, आपको ये इनाम दिया जाता है, आपको फ्री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, इसलिए आप अपना एड्रेस बताएं, आप अपने पापा का नाम बताएं, या बैंक अकाउंट, पापा के नाम के बैंक अकाउंट की डिटेल्स दीजिए ताकि हम आपको पैसे दे सकें। इस तरह की अगर कोई भी बातचीत आती है बच्चों, तो आप जो नन्हे मुन्ने सुपर हीरोज़ हैं ना, आप बहुत स्मार्ट हैं, क्या आप वो सारी मैसेजेस का जवाब देंगे? और क्या आप अपने पापा मम्मी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपके पापा मम्मी का बैंक अकाउंट कहाँ है, क्या आप वो देंगे? आप नहीं देंगे ना बच्चों, क्योंकि आप हैं सुपर हीरोज़। हाँ बच्चों, सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, और असली सुपर हीरो वो ही होता है जो मुश्किल आने से पहले ही सावधान हो जाए, है ना बच्चों। तो चलिए सुनते हैं ये बच्चों, समय की जो सुइया है, जो घड़ी की सुइया है, वो हमें बता रही है कि चुनमुन कार्यक्रम समाप्त होने पर है। तो आज दीदी लेती है आपसे अनुमति, लेकिन अगले हफ्ते हम जारी रखेंगे ये बात, ये दीदी का वादा है। तो
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: तो बच्चों, चुनमुन कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। प्रोडक्शन रहा चुनमुन का, मनीष सोलंकी का। अब दीजिए अनुमति। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनमुन, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की।

0: भूमि राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: वीडियो में 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। लीजिए सुनिए ये अगला गीत अभिजीत सावंत की आवाज़ में।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL

राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न

0: नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए सुनते हैं ये अगला गीत लक्की अली की आवाज में।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत का ये आखिरी नगमा शुभम शिरोले की आवाज में। बोल है सूफी खान के और धुन दी है रोमी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज करेंगे फिलौरी फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे आवाजें दी है रोमी ने। अन्विता दत्त का संगीत, माफ कीजिएगा बोल, और संगीत है स्वस्तदेव सचदेवा का।

फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे हैप्पी भाग जाएगी फिल्म से ये गाना, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, मुदसर अजीज के बोल और संगीत है सोहेल सैन का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हैप्पी भाग जाएगी फिल्म से ये गाना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं भाग मिल्का भाग फिल्म से ये गाना, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, प्रशून जोशी के बोल और संकन एहसान लॉय का संगीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं नमस्ते लंदन फिल्म का ये गाना, जिसे आवाजें दी है राहत फतेह अली खान और कृष्णा ने, जावेद अख्तर के बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म सत्यमेव जयते से ये गाना आप सुनेंगी। वाजिद है सिंगर और दानिश साबरी है।

फिल्म गुरु से ये गाना आप सुन रहे थे ए आर रहमान की आवाज़ों में। आइए अब आपको फिल्म संगीत में आगे ले चलते हैं और सुनवाते हैं मुल्क फिल्म से ये गाना, जिसे आवाज़ें दी है सफाकत अमानत अली ने। शकील आज़मी के बोल और अनुराग का संगीत।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश है अब सूर इन द सिटी फिल्म से। इसमें आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और तोची राणा की, समीर के बोल हैं और सचिन जिगर का संगीत।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में अभी दिन के 12 बजे हैं। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम से पहले वक्त है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
0: कमर्शियल एड के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चंपा मेथी के आवाजों के साथ।
2: का कोठे का गुजरात

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं ममता सिंह की आवाजों में अगली लोक रचना।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं बूंदू खां पार्टी की ये लोक रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज करेंगे जगजीत सिंह की इस गजल के साथ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है।

0: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ ही जैतपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाईमाधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में मॉनसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: बरसात की ये पहली दस्तक कुछ इस तरह पैगाम लाई है, खिड़की खोल कर तो देखो, कुदरत खुद मुस्कुराने आई है।
1: क्या बात है, भूल जाओ कल की तपिश, आज इस बूंद बूंद को जी लो, क्योंकि जिंदगी आज से फिर से खुशियों की महफिल सजाई है। तो सखियों, खुशियों की महफिल को सजाते हुए नारी वाटिका की महफिल को सजाने के लिए आज आपसे रूबरू हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो सखी समीना, और मेरे साथ है
0: कामिनी।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बचपन की कश्ती तो कभी जवानी का ख्वाब है, ये पहली बारिश भी जिंदगी का क्या खूबसूरत अंदाज है।
1: उम्र का हर पड़ाव भीग जाता है इसकी बूंदों में। ये सिर्फ मौसम नहीं, यादों की एक पूरी किताब है ना कामिनी?
0: बिल्कुल सखियों, साल की यह पहली बारिश सिर्फ आसमान से गिरता पानी नहीं है, बल्कि यह तो यादों का एक पूरा झोंका है।
1: बिल्कुल, जब यह बरसती है तो उम्र का हर पड़ाव खिल उठता है। वो बचपन की बेफिक्री जिसमें बिना छतरी के भीगना हमें मंजूर था।
0: वो जवानी के सपने और आज जिंदगी की इस दहलीज पर हाथ में कुल्हड़, चाय का कुल्हड़ थामे जिंदगी से खिड़की से इन गिरती हुई बूंदों को देखना, हर उम्र में इस पहली बारिश ने हमारी रूह को छुआ है।
1: बिल्कुल, तो हमारे रूह को छूती हुई जो ये पहली बरसात है, जो हमारे जोधपुर शहर में भी दस्तक दे चुकी है। पिछले 2 दिनों से हमारे शहर में भी बरसात हो रही है। तो आज की इस नारी वाटिका की महफिल में जो है, हम शुरुआत करते हैं मौसम के इसी बदलते मिजाज और अनमोल यादों के साथ में, क्योंकि बारिश की बूंदें जब आती है तो वह कई पुरानी यादों को अपने साथ में लेकर के आती है। और जब बरसात आती है तो मौसम कभी बहुत सुहावना हो जाता है और कुछ अलग अंदाज में ही गुनगुनाता है इस तरह से।

0: कामिनी, कभी तुमने महसूस किया कि बारिश की पहली बूंद जमीन पर जब गिरती है तो उसकी सौंधी सी खुशबू उठती है ना उसमें
1: बिल्कुल
0: से,
1: बिल्कुल.
0: और वो सीधे हमारे दिल तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने महीनों की प्यास बुझाने पर मुस्कुराकर अपनी खुशी की महक हवा में घोल दी हो।
1: बारिश की हर बूंद अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है. छत पर गिरती बूंदों की टप टप, पेड़ों की पत्तियों पर मोती सी चमक और ठंडी हवाओं का हल्का सा स्पर्श, यह सब मिलकर प्रकृति का ऐसा संगीत रचते हैं जिसे सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, मन शांत हो जाता है। और कई बार जो हमारा मन है वो हमारे बचपन की यादों में खो जाता
1: बिल्कुल.
0: है ना। सौंधी मिट्टी की खुशबू हमें बचपन की जो है गलियों में ले जाती है, कागज की नाव, बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ खिलखिलाना, और घर पे लौट करके अपने शरारत भरे अंदाज में ये कहना कि गरम गरम पकौड़े ले आइए,
1: बिल्कुल.
0: है ना।
1: कितनी सरल थी वे खुशियां और
0: बिल्कुल
1: कितनी गहरी थी उनकी यादें.
0: बिल्कुल। और इसके साथ उसे कैसे भूल सकते हैं कामिनी, जो बचपन में हम कागज की नाव बनाया करते थे।
1: और उसे दूर

0: जाते हुए देखा करते थे
1: और उसके
0: कि
1: पीछे पीछे जाते भी थे, और हम ये भी रेस लगाते थे कि किसकी नाव ज्यादा दूर तक जाती है। तो वो जो कागज कागज की कश्ती थी और उसके सहारे हमारा दूर तक निकल जाना, वो आज भी याद आता है ना।

0: सखियों, मानसून का मौसम पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है,
1: बिल्कुल सही कह रही
0: क्योंकि
1: हो
0: बारिश
1: कामिनी।
0: का पानी पौधों के लिए अमृत समान है। घर के आंगन या बालकनी में पौधे लगाएं, तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे आप घर पर ही लगा सकते हैं। और हाँ, बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जब बात करते हैं हम पेड़ों और पौधों की, तो इसी तरह से जो हर घर में एक बगीचा होता है, एक वाटिका होती है, तो हम अपने प्यारे प्यारे पौधों को तो भूल नहीं सकते। और जैसा कि तुमने बताया कि बरसात का जो पानी है वो पौधों के लिए अमृत समान होता है, तो मानसून का जो ये मौसम है ना, ये पौधों को त्यौहार जैसा लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और इस त्यौहार में एक बात और है कि उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो एक्स्ट्रा केयर कुछ इस तरह से कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और बरसात का पानी बहुत ज़्यादा अगर पौधों को मिल जाएगा, और अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, या जो गमले लगे हुए हैं उसमें नीचे का हॉल अगर बंद है तो, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी का भराव हो गया, तो उसकी जड़ें गल जाएगी, है ना। तो इसलिए पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे जो नाजुक जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस है या और जो दूसरे इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में अभी जब बरसात की शुरुआत ही हुई है, तो हम उन पौधों को ले जा करके किसी टिन शेड के नीचे रख दें
0: चाय
1: या
0: बाग।
1: बालकनी के नीचे रख दें, ताकि उस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरे। और इस तरह से हम इस उसको शिफ्ट करके उनको नया जीवन भी देंगे। तो पौधों को थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। फिर देखिए आपकी जो वाटिका है वो किस तरह से मुस्कुराएगी। और अभी हम मुस्कुराते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सखियों, बरसात के मौसम में स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो कामिनी। और उमंग और तरंग से हमारा ये सफर चल रहा है, लेकिन इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और स्वाद भी बना करके रखना है,
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा?
0: क्योंकि बदलता मौसम अपने साथ कई प्रकार की बीमारियां लाता है, इसलिए यह भी जरूरी है कि हम अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
0: इसके
1: बिल्कुल
0: लिए गर्म और ताजा भोजन करें, अदरक तुलसी और हल्दी का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, कटे हुए फल और बाहर का खुला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। भाई मुझे तो इस मौसम में अदरक तुलसी और शहद से बनी चाय बहुत ही पसंद है।
1: क्या बात कर ली तुमने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ये चाय तो मुझे भी बहुत पसंद है। और जब मौसम बदलने की बात कर रही हो, तो उस चाय में अगर काली मिर्च और गिलोय वगैरह जो है इसको भी मिला दिया जाए ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और हम जो सर्दी खांसी हो गई या मौसमी बुखार जो हो जाता है उससे हम बचे रह
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं।
0: ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं होती बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही बरसात के मौसम में जब स्वाद से उसको ना जोड़ा जाए, तो हर घर में चाय के साथ में गर्मा गर्म पकौड़े तो हैं ही हैं, उसके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज कामिनी तुम कुछ कह रही थी कि मैं भी कुछ बरसात से स्पेशल कुछ बना के आई
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हूँ।
0: जब बरसात की शुरुआत हो ही गई है तो आज संडे भी और समय भी, और कहते हैं ना मौका भी है और दस्तूर भी है, तो दाल बाटी और वो तो बनना बनता ही है।
1: बिल्कुल, तो आज तुम दाल बाटी बना करके आई हो। और यहाँ अगर हम हमारे शहर की बात करें, तो हमारे शहर का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि यहाँ हम जो जोधपुरी हैं वो मिर्ची बड़ा और समोसा खाए बिना तो रह ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल, जब बनती है गली में वो कचौरी है और तो वो पुकारती है कि आ जाओ।
1: बिल्कुल, और हम भी दौड़े चले आते हैं। हाँ यहाँ
0: बिल्कुल,
1: पे ये
0: खुशबू
1: कह
0: दूर दूर तक इतनी अच्छी आती है ना कि कोई डाइट पे भी हो ना तो उस दिन तो जरूर खाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे कि हम लोग हैं डाइट का भी ख्याल रखते हैं, बस ये है कि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हम खा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी हेल्थ पे
0: बिल्कुल,
1: पूरा ध्यान
0: ये
1: रखते
0: चीजें
1: हुए।
0: अपन घर पे भी बना के खा सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं ताकि सेहत भी अच्छी रहे और इम्यूनिटी भी बनी रहे।
1: और बासी खाना खाने से हमें इस मौसम में बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि बासी खाना जो है वो इस मौसम में, जब मौसम बदल रहा होता है, तो सड़ने का जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी हो
0: बहुत
1: जाती है,
0: जल्दी।
1: और हम अगर बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो भाई ये तो हो गई हमारे खाने की बात, लेकिन जब हमने किचन की तरफ रुख कर ही लिया है, तो यहाँ पे हम अपनी सखियाँ जो कि बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने पूरी तैयारी से मानसून की तैयारी भी कर ली है, तो उन्होंने भी अपनी सूजी को, मैदे को भून करके एयर टाइट डब्बों में बंद करके रख ही दिया होगा, और साथ ही इस मौसम में दालें वगैरह जो होती है और सूखे मसाले होते हैं उनमें भी कीड़े लगने का डर रहता है, तो उनको भी भून करके या फिर एयर टाइट डिब्बों में रखें। और
0: बिल्कुल।
1: साथ ही जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कोशिश कीजिए कि उनको छोटे डब्बों में निकाल करके फिर इस्तेमाल करें।
0: ताकि पूरी पूरी यूज में नहीं ले और वो सेफ रहे।
1: सेफ रहे वो, जो है नमी के कांटेक्ट में आकर के सील

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या?

0: इंजेक्शन।
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: तो सखियों कार्यक्रम चल रहा है नारी वाटिका और इसमें हम आपकी दो सखियां समीना और मेरे साथ हैं
4: कामिनी।
3: तो कामिनी हम जब बात कर रहे हैं बरसात के मौसम की या मानसून की, तो मानसून अपने साथ में यादों के झोंके लेकर के आता
4: है। बिल्कुल लेके आता है, चाहे वो बचपन की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुजुर्गों के साथ बैठ के उनकी वो बरसात की कई सारी ऐसी घटनाएं होती है। क्योंकि कई बार होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो अपन घर के बाहर होते हैं, घर के अंदर होते हैं या कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तो वो यादें जो हैं वो अपने को लाइफ टाइम तक याद रहती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो यादों के झरोके में सबसे पहले जो याद आती है वो होती है हमारे बचपन की याद।
4: बचपन की याद है, बिल्कुल। जब पहली बारिश होते ही हम घर से भाग जाते थे और कागज की नाव बनाकर पानी में बहाते थे और उसे दूर दूर तक जाते देखते थे। बारिश में भीगने पर माँ की डांट भी मिलती थी, लेकिन गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का स्वाद सारी डांट भुला देते थे।
3: बिल्कुल।
4: स्कूल की छुट्टी अगर बारिश की वजह से हो जाए तो लगता था जैसे कोई त्योहार आ गया। कीचड़ में उछलना और दोस्तों के साथ मस्ती करना, बिना किसी चिंता के मुस्कुराना, यही तो था बचपन।
3: बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद में जब हमने अपनी उस दहलीज पर कदम रखा, जब हम थोड़े से बड़े हो गए, हमें थोड़ी सी समझ आ गई, लेकिन जब बरसात की बूंदें गिरती थी तो वो बचपन की जो शरारत है वो फिर से हमारे अंदर लौट आती थी। और हम चाहे समझदार भी क्यों ना हो जाए, हम जवानी की दहलीज पर भी हमने कदम क्यों ना रख दिया हो, हम एक अलहड़ तरीके से उस बरसात के मौसम में झूम कर नाच उठते थे।
4: बिल्कुल।
3: और बस मन करता था कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं ऐसी जगह पे जाया जाए या बरसात के मौसम का पूरा लुत्फ उठाया जाए।
4: बिल्कुल। आज भी जब बारिश होती है लेकिन जिम्मेदारियों की छतरी के नीचे हम अक्सर भीगना भूल जाते हैं। काश जिंदगी हमें एक दिन फिर वही बचपन लौटा दे जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं था, खुशियों का दूसरा नाम था।
3: बिल्कुल, खुशियों का दूसरा नाम, और कहते हैं कि जिंदगी चलते रहने का नाम है। और देखो ना, जब कामिनी हम बात करते हैं हमारे बचपन की, तो हमें हमारे बुजुर्गों के वो अनुभव भी याद आते हैं। जब बरसात होने वाली थी तो वो अपने अनुभवों से हमें कुछ कहानियां सुनाते थे, और उनके अनुभवों से सुनी हुई जो कहानियां हैं वो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है। और उनका कहानी सुनाने का अंदाज वो तो बिल्कुल अलग होता था। वो जब कहानियां सुनाते थे तो में बहुत सारी सीख होती थी, वो सीख हमारे जीवन में भी काम आती है। जैसे कि बरसात के मौसम में हम कहीं जा रहे हैं, आजकल देखो ना सेल्फी लेने का जो है क्रेज है।
4: बिल्कुल।
3: और इसके साथ ही हम हर उस नजारे को कैद कर लेना चाहते हैं जिसको हम देखते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम नजारों को कैद तो करें लेकिन उन नजारों का लुत्फ भी उठाएं। कई बार होता है कि हम फोटोग्राफी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन नजारों का सही तरीके से जीवन में लुत्फ ही नहीं उठा पाते। तो कोशिश ये कीजिए, और साथ ही जब आप सेल्फी ले रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे आप गए हो, तो वहां पे हमारे बुजुर्ग तो यही सलाह देते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
4: बिल्कुल। जब बारिश हो रही होती है तो अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको कविता के रूप में लिखना, शायरी के रूप में लिखना, अपनी मनपसंद किताब खोल के पढ़ना, ये सब अपनी यादों का एक पिटारा ही लेके बनाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमारे बुजुर्गों की जो कहानियों के अनुभव हैं वो हमारी जिंदगी की कहानी से किस तरह मिलते हैं कि छोटी सी कहानी से और बारिशों के पानी से सारी वादियां महक उठती है।

0: कामिनी, बरसात का मौसम है ना, उसमें अपने आप में बहुत सारे साज छुपे हुए हैं। तो टपकती बूंदों में बहुत सारे साज छुपे होते हैं, बस उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है। और वो जो साज होते हैं ना, वो बरसात की बूंदों में हमें सुनाई देते हैं और वो हमारे मन को बहुत सुकून देते हैं। देखो
1: बिल्कुल.
0: ना, बरसात के मौसम में जब दूर कहीं झिंगुर भी बोलता है तो उसमें भी हमें म्यूज़िक सुनाई देता है ना।
1: बिल्कुल.
0: तो ज़िंदगी में हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो है पॉजिटिविटी ढूंढना हमारे अंदर खुद में होना चाहिए, कि हम कैसे हर मौसम में, हर मौसम का लुत्फ उठाते हुए पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं। और जो म्यूज़िक है, जो साज़ है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जब उस एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा मन मयूर जो है वो नाच उठता है और मन करता है कि हम भी ऐसे आसमान में उड़ें, ऐसी जगह जाएं और खुल करके नाचें, है ना।
1: बिल्कुल. तो बरसात में फैशन और आराम दोनों का ही संतुलन बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल
1: तो इस दौरान हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनने चाहिए, गहरे रंगों का चुनाव करना चाहिए और हाँ, आरामदायक फुटवेयर पहनने चाहिए. तो जब नाचना है, कहीं घूमना है, करना है, तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा.
0: बिल्कुल
1: स्किन की केयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्किन को साफ और सूखा रखें, खूब पानी पिए और मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो कि इस मौसम में अगर भारी भरकम कपड़ों के बारे में अगर हम सोचें ना, तो भी सोच के भी मन एक बार से ये हो जाता है कि नहीं भाई, ना बाबा ना, ऐसे कपड़े तो हम नहीं पहन सकते। तो इस सीज़न के लिए हम अपनी अलमारी में प्योर कॉटन के कपड़ों को रखें, लाइट कलर और लाइट वेट जो फैब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ में हम, जैसा कि आपने बताया कि चेहरे की त्वचा का या स्किन का भी हमें विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इस मौसम में देखो है ना, हमारी जो त्वचा है वो कामिनी चिपचिपी सी,
1: चिपचिपी
0: ऑयली
1: से
0: हो
1: बिल्कुल.
0: जाती है। तो उसके लिए हमारी दादी नानी का बताया हुआ नुस्खा है, उसको हम अपना सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी और उसमें गुलाब जल मिला करके उसको अगर चेहरे पर लगाएं तो हमारा चेहरा एकदम ग्लोइंग और फ्रेश हो जाएगा।
1: बिल्कुल.
0: और जब हम खुद से प्यार करती हैं, खुद से अच्छा लगना चाहती हैं, तो हमारा जो मन है वो नाच उठता है। और देखो, बारिश में, पहली बारिश में भीगने का जो मज़ा है ना, वो कहीं और किसी दुनिया के वाटर पार्क में तो है नहीं।
1: बिल्कुल.
0: तो बरसात जब हो रही हो और उसमें जब हम उसकी बूंदों के साथ में जब थिरकते हुए जब नाचते हैं, तो मन खुद ब खुद ही ये कह उठता है कि नाचूं आज छम
1: छम
0: छम।
1: छम छम.

0: सखियों, कभी आपने गौर किया है कि जब ये पहली बारिश आती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारा मूड भी एकदम से रिफ्रेश हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू होती है ना, सीधे दिमाग को सुकून पहुंचाती है और सारा तनाव पल भर में गायब कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें एक मौका दे रही है कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए हम थाम लें, खिड़की के पास बैठें और बस इस पल को जिएं। ये जो वक्त है ना, ये वक्त है खुद से जुड़ने का, है ना। हमारे जो अधूरे काम, हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, उनको फिर से जीने का, उनको पूरा करने का,
0: बिल्कुल।
1: अपने पुराने दोस्तों से बतियाने का, उनके साथ वक्त गुजारने का।
0: और अपने आप को भी पहचानने का,
1: बिल्कुल
0: बारिश हो रही हो और आप उन बूंदों के साथ अपने आप को जिस तरीके से अपने आप को उसके
1: महसूस
0: साथ
1: करते हैं।
0: महसूस करते हो, जोड़ते हो, वो तो फीलिंग्स ही बहुत अलग है। तो
1: बिल्कुल
0: चलिए, इस सुहाने मौसम में हम अकेले अकेले क्यों मजे लें, हमारी नारी वाटिका के परिवार को भी शामिल करते हैं।
1: वो तो हमारे साथ है ही, और हमारी जो सखियां हैं वो भी इस पल को महसूस करें, क्योंकि देखिएगा शाम तक आप जब तैयारी कर लेंगी तो बरसात फिर से आ जाएगी, और फिर हमें याद जरूर करिएगा और हमारे ताल से ताल मिलाइएगा।

0: समीना, बरसात के मौसम में सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पानी की बूंदें जब गिरती है धरती पे तो वो सड़कों पर, घरों की छतों से बाहर और इतना जल भराव हो जाता है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज की भी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: जैसे जल भराव वाली जगहों से दूर रहना है और गाड़ी चलाते समय गड्ढों का विशेष ध्यान देना है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही अभी जब बरसात का मौसम, पहली बरसात जब दस्तक दे रही है, तो हमारी छत पर जाकर हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए। पानी जैसे कूलर है या पानी इकट्ठा होने वाला कोई सामान है तो उसको हम वहाँ से हटा दें ताकि मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि इस मौसम में मलेरिया वाले मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं, तो ये भी बीमारी का कारण बनते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और बिजली के खंभे और टूटे हुए तारों से हमेशा सावधान रहना है। आसपास स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और जब हम किचन की बात कर रहे थे तो किचन में जो हमारा सबसे साफ सुथरा जो एरिया है उसके डस्टबिन का भी हमें पूरा ख्याल रखना है। हम कई बार लेजीनेस हो जाता है या हम लोगों को ये रहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद में हम कचरा बाहर डाल देंगे, तो हम गीले सूखे कचरे को तो अलग रखें, उस तरीके से रखना ही है। और साथ ही हम कचरे का निस्तारण जल्द से जल्द करें, क्योंकि नमी की वजह से बहुत ज़्यादा कीटाणु जल्दी से फैल जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षित परिवार और स्वच्छ समाज और हरा भरा पर्यावरण ही एक बेहतर भविष्य की पहचान दे सकता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो इसलिए हरा भरा पर्यावरण रखने के लिए पौधे जरूर लगाएं, शीट बॉल्स जो होते हैं उनको आप इस मौसम में दूर दूर तक बिखेर दीजिए, तो प्रकृति मुस्कुराएगी, तो हमारा जीवन खुद ब खुद संवर जाएगा।

0: टपकती बूंदों में सरगम की मिठास है, हर बूंद में छुपा कोई जज्बात खास है। राग मेघ मल्हार सा गूंजा है आसमां, और मौसम का हर साज आज मेरे पास है।
1: क्या बात है।
0: तो कामिनी, बातें करते करते समय का पता नहीं चला, और अब समय हो चला है हमारी सखियों से विदा लेने का। तो सखियों से यही कहेंगे कि बारिश की जो ये पहली दस्तक है, जितनी खूबसूरत होती है उतनी हमारी जिम्मेदारियां भी लेकर के आती है। तो आज हमने जाना कि कैसे ये सुहाना मौसम हम लोगों के लिए बहुत ही हसीन और बहुत खास हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब नारी सजग होती है तो पूरा परिवार सुरक्षित और खुशहाल होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब वक्त हो चुका है इस महकती हुई वाटिका से विदा लेने का।
0: तो चलते चलते हैं, हम अपनी नारी वाटिका की टीम से आपको रूबरू करवाते हैं कि HPT ट्रांसमिशन से हमारे साथी थे विक्रम सिंह भाटी और दिलीप सिंह परमार। कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया राय सिंह राव ने, और कंसोल से आपको खूबसूरत नगमे सुनाए मोनिका ने, और कार्यक्रम की परिकल्पना और संयोजन किया मनीष सोलंकी ने। दीजिए अब इजाजत अपनी रेडियो सखी समीना,
1: और कामिनी को
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में

0: औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है।

0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गऊ, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने

0: एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय बजे हैं 2:30। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे स्त्री 2 फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है विशाल मिश्रा ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना कॉकटेल टू से ये गीत। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं पठान फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और सुकृति कक्कड़ ने।

इस गाने के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं एक इस फिल्म से ये गाना, जिसमें आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह की और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ये गाना, जिसे आवाज़ें दी हैं खान साहब और शाश्वत सचदेवा ने। नुसरत फ़तेह अली खान के बोल और संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेवा और नुसरत फ़तेह अली खान ने।

फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से ये गीत, जिसे गाया है केसारी लाल यादव, मासूम शर्मा, देव नेगी, प्रीतम, निकिता गांधी ने, और संगीत है इसमें APS का, बोल लिखे हैं जयराज ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत।

फिल्म संगीत का आखिरी नगमा आप सुनेंगे बागी 4 फिल्म से। जोश बरार की आवाज़, कुमार के बोल और सलामत अली मुताई के संगीत।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: इसका बेसब्री से इंतजार कौन नहीं करता। फिर भाई जिस रफ्तार से भाग के चला भी जाता है, इसका दुख भी अलग है। खैर कोई नहीं, अभी तक हम लोगों में से बहुत सारे लोग मंडे की प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे कि कल क्या करना है, कल ऑफिस जाना है। बट हाँ, शाम के कुछ लम्हे होते हैं वो खुद के लिए निकालने चाहिए, चाय कॉफी के साथ। खुद का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मौसम हो रहा है भाई साहब, अभी तो थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, बट उम्मीद है कि बारिश अब थोड़ी ज्यादा कंटिन्यू होगी, क्योंकि कल रात को भी अच्छी बारिश हुई थी और उससे पहले भी अच्छी बारिश हुई थी। तो हाँ, अभी एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छी बारिश होगी। पर आज है संडे, आपसे बहुत सारी बातें होने वाली है। और आज का जो क्वेश्चन है भाई, वो बहुत फनी सा है, वो हम आपको बताएंगे। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें। मेरा नाम है रिद्धि।
1: और मैं हूँ दोस्तों विकास। जैसा कि अभी रिद्धि ने बताया कि मंडे की तैयारियां जो हैं वो लोग आज से ही करने लग गए होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है रिद्धि कि क्यों ना आज को ही जो है वो अच्छे से जिया जाए, कल की कल देखेंगे कल सुबह उठ के। क्यों, सही कहा ना मैंने?
0: बिल्कुल, ये तो है ही है। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ये जो गानों का सिलसिला है, ये भी बहुत खूबसूरत होने
1: बिल्कुल
0: वाला है। तो शाम शुरू करते हैं इस ट्रैक के साथ।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में, जहां आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मेरे साथ है
1: रिद्धि।
0: तो रिद्धि। मेरे सवाल जो है वैसे तो माइंड में काफी सारे हैं, लेकिन उनमें से जो एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो हम सभी से बहुत जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक थोड़ा फनी भी है। और क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी दोस्तों पब्लिक प्लेस में कभी ऐसा कोई जो कभी कोई ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ है, या फिर कभी आपने कोई ऐसी बात देखी हो, या ऐसी कोई चीज़

0: सुनी
1: सुनी हो,
0: हो।
1: जिसको देख के आपको, मतलब वो कहते हैं ना, अकेले अकेले में बैठ के हंसने लग गए हो आप,
0: हंसी
1: ऐसा थोड़ा सा वो मोमेंट कभी भी आपके साथ हुआ हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं।
0: हाँ, जिसमें आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति ना हो, कहीं पे
1: बिल्कुल
0: आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं ऐसे ग्रुप में बैठे हो, आप एकदम अकेले हो
1: बिल्कुल,
0: और कोई
1: रैंडम
0: ऐसी,
1: पर्संस के साथ,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: कोई ऐसी एक चीज़ स्ट्राइक करती है जो शायद आपको घर जाने के बाद भी हंसी आए। अब वो स्वीट भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है
1: बिल्कुल
0: कि आपके चेहरे पर मुस्कान आई जाती है। तो
1: बिल्कुल। या फिर
0: आपके
1: अगर
0: साथ,
1: रिद्धि,
0: हाँ
1: एक वो भी चीज़ है कि जैसे कभी आप अपने वर्क प्लेस में हो, या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हो, वो कहते हैं
0: हाँ
1: ना कि आउट ऑफ द सिटी भी गए हो या इन द सिटी भी, अगर आप कहीं अपने नियर बाई प्लेसेस में घूम रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को लग जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रैंडम चीज़ें किसी इंसान से ही जुड़ी हुई हो।
0: बहुत कुछ होता है।
1: बिल्कुल
0: अभी अभी तो विकास ऐसा है ना कि मौसम चेंज हो रहा
1: बिल्कुल
0: है, तो बारिश का मौसम आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाय की दुकानों पे, नमकीन की दुकानों पे इतनी भीड़ होती है, तो
1: बिल्कुल
0: वहां पर कोई ना कोई डायलॉग ऐसा उड़ता हुआ आएगा और भाई जो हंसी
1: बिल्कुल
0: आती
1: सही
0: है
1: कहा
0: उस वक्त।
1: आपने।
0: तो आप ऐसी चीजें हमारे साथ आज शेयर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही लाइट और होता है ना, लाइट
1: बिल्कुल
0: हार्टनिंग है,
1: बिल्कुल
0: कि आप बता सकते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाई और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0291255330 और दूसरा नंबर है 2554300। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे अच्छे से गाने।

0: तो विकास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पब्लिकली, हमारे साथ कुछ ऐसी फ़नी चीज़ ना हो तो हमारे खुद के साथ हो ही जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल हो
0: क्योंकि
1: जाती है।
0: हम अक्सर ये होता है कि घर से बाहर निकलना ही होता है कि अरे यार मेरा चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा लगा के ही हम चश्मा ढूंढ रहे होते हैं।
1: बिल्कुल
0: कई
1: सही
0: बार
1: है।
0: हम चाबी को भी अपने पर्स में रखने के बाद उसको भी 100 बार
1: अरे अभी
0: ढूंढते
1: मैं मेरे साथ
0: रहते
1: इंसिडेंट बताऊँ रिद्धि आपको, कि
0: हैं।
1: 3-4 दिन पहले की बात है, मैं सडन काम करते करते मेरे हाथ में पेन था, ठीक है, तो मुझे कोई कॉपी या रजिस्टर वगैरह ढूंढना था, तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, तो मैंने अपने कान में पेन लगा लिया। अब मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया कि यार कहाँ पर है वो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 1 घंटे से टेंशन में, मैंने कहा यार कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ पे बैठा था, वहाँ पे बैठा था, वहाँ भी देख लिया नहीं है, यहाँ भी देख लिया नहीं है, कॉपी की जो कॉपी किताबों के बीच में भी देख लिया तो वहां पर भी नहीं मिला, ठीक है। फिर अचानक मैं कुछ ऐसे कान कान के साइड में खुजली कर रहा था, मैंने कहा अरे यार, तो मतलब इतनी फनी फनी थिंग हो जाती है ना कभी, ये आप सही कह रहे हो,
0: भाई सच में, दूसरों के साथ होना हो पर खुद के साथ होता है तो इतना डम
1: बिल्कुल
0: फील होता है,
1: बिल्कुल
0: और खुद पे इतनी हंसी आती है कि भाई तुम इंसान हो, तुम अच्छा खासा काम कर रहे हो, फिर भी ऐसी हरकतें क्यों करनी है। तो श्रोताओं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, और सबके साथ होता है भाई,
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: कोई नहीं है जो एकदम परफेक्ट जी रहा है लाइफ में,
1: बिल्कुल
0: तो आप
1: बिल्कुल
0: हमें बता सकते हैं। हाल फिलहाल अभी के हमारे शाम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल, करते हैं उनसे बातचीत।
0: हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार, मैं इकरामुद्दीन बोल रहा था।
0: जी जी
2: नमस्ते सर,
1: नमस्कार।
0: आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कुछ बहुत फनी?
2: अरे मैडम, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि हम हमारे पापा के साथ बेंगलोर घूमने गए, हम भाई बहन सब जाने गए हुए थे।
0: हाँ
2: वहाँ पार्क एक ऐसा है बेंगलोर के अंदर कि
0: हाँ
2: जिसके अंदर उस बंदे को हंसाने के 500 रुपए।
0: अच्छा,
2: अब उसके सामने हम सब जाने जितनी भी कोशिश कर रहे थे, इतना हंस हंस के पागल हो गए, बाकी वो हंसा नहीं।
0: नहीं ऐसा
2: और अरे वो बिल्कुल ही हंसा नहीं, वो तो एक्शन ऐसा लग रहा था मूर्ति खड़ी है। और जैसे हम उसके सामने हंस रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही हम रुके तो उसने एक्शन बदला एकदम, तो उससे हम डर गए।
0: हाँ
2: इतना मतलब उसको 500 के चक्कर में हमने इतनी कोशिश करी लेकिन हम हंसा नहीं पाए मैडम उसको।
0: उस 500 रुपए के
2: और
0: चक्कर में जो आपके
1: बिल्कुल
0: आसपास लोग हंसे होंगे ना आपको देख
2: वो सब हंस रहे थे मैडम, सब हंस रहे थे भाई, इसको हंसा के 500 रुपए जीतने अपने को कैसे।
1: बिल्कुल, भले ही आपने उन्हें नहीं हंसाया लेकिन साथ वालों को हंसा दिया, तो इसका
2: अरे
1: मतलब यह है कि
2: सच
1: आपने
0: में
1: 5 लाख का
0: सर
1: इनाम भी जीत लिया।
0: सर आपने क्या किया था, हम जान सकते हैं?
2: जी,
0: आपने क्या किया था उनको हंसाने के लिए?
2: मैडम हमने उसने उसको इतनी कोशिशें करी, उसके सामने चिंगना जैसे बंदर
1: जी
2: चिंगारी
1: जी
2: मारता
1: जी
2: ना,
1: जी जी जी
2: वैसे करके भी देखा, उसके आगे हंस हंस के भी ऐसी कोशिश करी कि भाई हंसे हंसे, लेकिन वो हंस नहीं पाया मैडम।
0: अरे भाई, ये जो टैलेंट है ये भी अलग लेवल का है। मतलब आप जो
2: जी
0: बता रहे हैं
2: मैडम,
0: बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी प्यारा इंसिडेंट था
2: थैंक यू
0: ये।
2: मैडम, थैंक यू इकरा।
0: तो विकास, ये जो चीज़ थी ये भी बहुत फनी है कि दुनिया में ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, या फिर ऐसी प्रतियोगिता भी है कि आपको हंसाना पड़ेगा किसी को और फिर आपको इनाम मिलेगा।
1: अरे
0: तो
1: बिल्कुल
0: आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, जहाँ पे भी ये चीज़ हो रही होगी तो लोग क्या क्या हरकतें करते होंगे उस
1: बिल्कुल
0: बंदे
1: सही
0: को
1: कहा आपने,
0: हंसाने के
1: और
0: लिए।
1: ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक प्रतियोगिता जो अभी हमारे लिसनर्स ने हमें बताई है, तो काफ़ी यूनिक चीज़ है रिद्धि ये, कि मतलब आप एक पब्लिक की जो अटेंशन है वो ले सकते हैं, आप कम से कम लोगों को खुद को खुश रखने के

0: ये भी जो है वो एक, मुझे ये लगता है कि एक टिप है एक तरीके की, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये।
1: पर भाई जो इंसान नहीं हंसा होगा उसको सलाम है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा चीज़ होता है कि कुछ भी हो गया खुद को हंसी आ जाती है भाई, इतना कंट्रोल करके कैसे रखते लोग। तो ये चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको पर्सनली आपको हंसा दिया हो या फिर पब्लिकली आपको हंसाया हो तो आप ज़रूर से हमें बता सकते हैं, और हमारे नंबर हैं
0: 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि फ़ोन के साथ भी फ़नी चीज़ें हो जाती है। आप भाई
0: बिल्कुल
1: आप उसको चार्ज में लगाओ, बहुत तेज़ी से चार्ज में लगाओ और फिर लगे कि हाँ यार अभी
0: बिल्कुल
1: तो स्विच
0: बिल्कुल
1: तो ऑन ही
0: सही।
1: नहीं किया।
0: चलो इसी बीच हमारे अगले कॉलर का जो है वो फोन हमारे पास आ चुका है, आइए करते हैं उनसे सुनते हैं उनका, उनके पास कौन सा किस्सा है।
1: हेलो
0: हेलो।
1: यस मैम,
0: जी सर, क्या नाम है आपका?
1: विनय नाम है मैडम।
0: विनय जी बताइए आपके साथ
1: मैडम
0: ऐसा क्या हुआ है?
1: हमने एक हेल्थ कॉम्पिटिशन में भाग लिया था,
0: हम्म,
1: तो उसके अंदर हमारे को वेट लॉस का जब होता था ना, तो महीने के अंदर एक दिन हमारा वो फैमिली डे का प्रोग्राम होता था, तो अच्छा उसमें मैडम है ना बॉयज को है ना लेडीज को दिए थे मैडम बॉयज की चोटी बनाना, मैडम जो
0: ओके
1: ज्यादा
0: जी
1: चोटी बनाएगा ना मैडम उसको इनाम मिलेगा मैडम। तो मैडम वो उसके बाल छोटे होते हैं मैडम, तो चोटी बन ही नहीं पा रही थी मैडम। अच्छा तो ये मतलब ये भी बहुत ही, अगर इमेजिन किया जाए तो ये काफी क्रिएटिव सा
0: हाँ
1: इवेंट है कि आपको किसी की चोटी बनानी। मैडम छोटे छोटे बाल थे जेंट्स के, तो मैडम सब अभी तो छोटे छोटे बाल लगते हैं मैडम काफी जने, तो छोटी बन ही नहीं पा रही थी मैडम, वो रबड़ लगा वापस रबड़ खुल जाता था
0: तो
1: मैडम।
0: फिर उस प्रतियोगिता में आपका नंबर कहाँ पे था विनय जी?
1: सर मेरा सेकंड नंबर आया था सर।
0: सेकंड नंबर,
1: चलो मतलब
0: ये भी
1: आपने
0: अच्छी
1: बनाई
0: बात
1: तो
0: है।
1: होगी।
0: मैंने नहीं बनाई थी सर,
1: अच्छा
0: लेडीज आर्मी की चोटी बना रही थी सर।
1: अरे
0: अरे
1: वाह
0: वाह
1: क्या
0: कोई
1: बात
0: नहीं, चलो आपने अपना जो ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।
1: है। थैंक यू सर।
0: तो श्रोताओं अगर आपके पास भी ऐसे ही किस्से हैं तो आप हमें लगा सकते हैं फ़ोन, और हमारे फ़ोन नंबर रिद्धि बताएगी।
1: हाँ नंबर तो भी बताए दिए थे, वो है 2555300, दूसरा नंबर है 2554300। हाल फिलहाल चाय कॉफ़ी लीजिए और गानों को एंजॉय कीजिए।

0: तो विकास, इसी के साथ लग रहा है कि हमारे आज शाम के नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, पर वो
1: बिल्कुल
0: जुड़े उससे पहले मुझे एक और फनी चीज़ याद आ रही है.
1: बिल्कुल बताइए।
0: विकास, एक बार ये भी हुआ था कि हम जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कहीं
1: जी
0: जाते हैं
1: जी
0: तो ऐसा लगता है ना एकदम एक्सट्रीम लेट हो रहा हो.
1: जी
0: तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं से तो बाहर निकली थी और मेरी जो गाड़ी है
1: बिल्कुल
0: उसका एकदम सिमिलर मॉडल उसके पास खड़ा था. मैं बताऊंगी ये इंसिडेंट, आगे कंटिन्यू करेंगे.
1: बिल्कुल लगता
0: हाल
1: है।
0: फिलहाल हमारे
1: हाँ
0: अगले
1: बिल्कुल
0: कॉलर
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: कॉलर
0: साथ
1: जुड़
0: जुड़
1: चुके
0: चुके हैं.
1: हैं।
0: हेलो हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्ते मैम,
2: नमस्ते नमस्ते.
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम खेतन है, मैं जयपुर में से बात कर रही हूँ.
0: अच्छा खेतन, ओके. तो खेतन आप क्या कर रहे हैं अभी, पढ़ाई कर रहे हैं?
2: हाँ, 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ.
0: अरे वाह, क्या बात है. आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फनी,
2: हाँ, ऐसा फनी तो हुआ है. एक बार क्लास में,
0: बताइए.
2: एक बार क्या हुआ था कि हम ऐसे ही बैठे थे, फिर पीरियड खाली था, तो बैठे बैठे मतलब हंसाने वाला, अभी तो आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ा था ना,
0: जी
2: उसी की तरह हो गया.
0: अच्छा
2: मतलब हंसाने वाला खेल खेलने लगे.
0: ओके
2: एक बंदा है जो मेरी क्लास में हंसता ही नहीं है, मतलब उसको हंसाने के लिए काफी मेहनत की, हंसा नहीं. तभी अचानक से टीचर आ गई क्लास में.
0: अच्छा
2: टीचर ने फिर डंडों से हमें बहुत मारा.
0: मतलब जो लोग हंसाने की
2: क्लास
0: कोशिश
2: पूरी
0: कर रहे थे
2: हंस
0: उन
2: पड़ी
0: सबको मार पड़ी?
2: सर, अब फिर पूरी क्लास हंस पड़ी हमारे ऊपर.
0: उसको हंसी आई या नहीं आई?
2: उसको फिर भी नहीं आई.
0: वाह क्या बात. ये जो लोग हैं दुनिया में, मैं मिलना चाहूंगी जिनको इतना कुछ होने के बाद भी हंसी नहीं आती.
1: और बिल्कुल, और उस दोस्त से भी मेरा ये कहना है कि देखो, जिस दोस्त ने आपको हंसाने के लिए डंडे खा लिए, तो एटलीस्ट आपको एक मुस्कान तो लानी चाहिए थी।
0: खेतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
2: धन्यवाद.
0: तो भाई, स्कूल की तो कहानियां क्या ही कहे विकास. हमारे भी क्लास में ऐसा बहुत बार हुआ है. मतलब जो हमारा ग्रुप
1: बिल्कुल
0: था तो उसकी एक आदत हमेशा से रही है कि क्लास में कुछ भी सीरियस चल रहा हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करनी है कि पूरी क्लास
1: बिल्कुल
0: को एक बार हंसी आ जाए. तो हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, उसकी आदत थी वो ज़बरदस्ती या तो खांसी करने लग जाएगा या उसको
1: बिल्कुल
0: ज़बरदस्ती छींक आने लग जाएगी. और फिर वो सीक्वेंस में चलती थी. ऐसा भी नहीं है कि एक जने ने करके बस बंद कर दी, वो पूरी क्लास फिर उसको फॉलो करके ऐसा माहौल बनाते थे कि भाई टीचर तक ऐसे परेशान हो जाते कि कैसी क्लास है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूल टाइम में तो रिद्धि ऐसा भी होता था कि मेरे साथ ही अक्सर इंसिडेंट होता था, और मुझे वो सोच के आज भी ऐसी आती है कि जब किसी, जैसे कि जस्ट हम

0: की बेंच पर अगर 2 से 3 स्टूडेंट्स हम बैठा करते थे पहले, तो जैसे ही हम तीनों में से किसी एक को टीचर ने खड़ा किया और बहुत जोर से सुना दिया, क्या कर रहा था तू, पढ़ाई नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो हम साइड में ऐसे मतलब हाथ रख के और ऐसे हंसते थे, तो लाइक मैडम ऐसे देखते, तेरे को बड़ी हंसी आ रही है। तो वो भी एक बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था स्कूल टाइम में।
1: भाई स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो बहुत सीरियस हुआ करते थे डांट पड़ने पे, पर हाँ हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसे हंस दिया करते थे। तो विकास,
0: बिल्कुल।
1: हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर,
2: नमस्ते
1: क्या नाम है आपका?
2: सर। मेरा नाम कृष्णा राम है सर, पावटा चौराहे से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी
1: जी
0: कृष्णा
1: जी
0: राम।
1: कृष्णा राम जी, बताइए आपके साथ क्या ऐसा बहुत ही ज्यादा मजाकिया हुआ है?
2: सर एक एक सही में शादी में गए थे हम, शादी थी तो हम 4 दोस्त गए थे शादी के अंदर, तो वहाँ खाना चल रहा था।
1: जी
0: जी
2: हमने कहा यार खाना खा लेते हैं चलो। तो खाना खाने बैठे तो एक आदमी अकेला बैठा था, उसमें 5-7 गुलाब जामुन डाल दिए उसने, और हम थोड़े थोड़े लेके चारों आदमी एक साथ में खा रहे थे। वो
1: अच्छा
2: 5-7 खा गया, हम खाना छोड़ दिया, उनको देख के हम हंसने लग गए। तो
0: जी
2: उसने एक बार और डलवा दिए 4-5, मतलब वो 10-12-15 के करीब खा गया, और हम दो दो गुलाब जामुन नहीं खा सके। क्यों, हम हंसने में ही रहे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: उसको देखते रहे हंसते रहे, उसको देखते रहे हंसते रहे, हम ठीक
0: बिल्कुल। उन्होंने
2: से
0: गुलाब
2: उसके
0: जामुन पे
2: खाना नहीं
0: फोकस
2: खा
0: किया।
2: सके हम। हाँ
0: बिल्कुल, उन्होंने गुलाब जामुन पे फोकस किया और आपने उन पर किया।
2: जी, वो खाता रहा, हम उनको देखते रहे, हम खाना भूल गए।
1: आपके 2-3 गुलाब जामुन रह गए सर
2: दो तीन हमने
1: आप।
2: 2-3 खाए, वो तो 15-20 खा गया बेटा बेटा। तो हम उनको देखते रहे हंसते रहे और खाना खाना भूल गए।
1: ये होता है सर, ये शादी में कोई ऐसे लोग दिख जाते हैं फिर आप भूल जाते हो आप खाना खा रहे हो।
2: हाँ हमारे पीछे आके बैठ गया, हम क्या एक दोस्त की नजर पड़ गई यार, देखो गुलाम
0: बिल्कुल
2: जामुन, वो बोले लाद भी नहीं लगा ऐसे पेट में जा रहा उसके।
0: बिल्कुल सही कहा। और हम लोग भी यही आशा करते हैं कि आप इन गुलाब जामुन की भरपाई अगली कई जगह पर जाकर कर पाए अपने दोस्तों के साथ में।
2: हाँ जी हाँ जी जी
1: सर, आपका बहुत
2: जी
1: बहुत
2: जी
1: शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: तो
2: तो
0: श्रोताओं, अगर आपके पास भी ऐसे किस्से हैं या फिर कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि
1: किससे
0: चटपटे,
1: कहानियां,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: चटपटी कहानियां हों कि इस तरीके से कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, या फिर कह सकते हैं कि मज़ेदार इंसिडेंट हो, तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर है
1: नंबर है 0912-55-33-00, और दूसरा नंबर है 255-43-00। और अभी तक जितने भी कॉल्स आए वो सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि सबकी अलग कहानियाँ हैं, किस्से हैं। तो हाँ, हम वेट कर रहे हैं और ऐसे कहानी किस्से के, आगे चलते हैं और ये पार्टी सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

0: तो विकास, जो किस्से की बात में कर,
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले, आ गया नया किडबैक।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
0: तो विकास, जो मैं किस्सा आपको सुना रही थी, हमारे पिछले कॉलर आए थे उससे पहले,
3: बिल्कुल
0: वो कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार मैं बहुत ही जल्दबाजी में कहीं जा रही थी और मैं मंदिर गई थी। हाँ, मुझे याद है।
3: बिल्कुल
0: तो वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी होती है।
3: जी।
0: तो मैं ऑफिस का बैग ली हुई, एक हाथ पे फ़ोन पे बात करते होता ना कि आ रही हूँ, वो जो
3: बिल्कुल
0: जल्दबाजी
3: बिल्कुल
0: वाला
3: एकदम
0: मोमेंट होता है।
3: फास्ट मोड में।
0: हाँ, तो अब
3: बिल्कुल
0: हुआ ये था कि जो मेरी मेरा स्कूटर था उसके जैसा सेम मॉडल उसके पास खड़ा था।
3: बिल्कुल
0: तो अब सोचो, एक तो लेट होने वाला मोमेंट होता है,
3: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसमें आप गाड़ी में चाबी लगाओ, लग ही नहीं रही, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही, ना
3: एग्जैक्टली
0: लॉक खुल रहा, अब दिमाग खराब हो गया कि गाड़ी को क्या हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी का जो डिक्की होती है उसको खोलने की कोशिश करती हूँ, मैं उसमें चाबी लगी, उसमें नहीं लग रही। फिर मेरी नज़र एकदम से पीछे गई मेरा स्कूटर पीछे था, मैं पता नहीं किसी और की स्कूटर में चाबी लगा के उसको क्यों स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ये पूरा इंसिडेंट था, वहां पर कोई तो अंकल खड़े थे पीछे, मतलब ऑटो वाले, वो पूरा ये देख चुके थे मतलब ये इतनी हड़बड़ी में जो 5 मिनट का समय निकला, उनको जो हंसी आई भाई और जो मुझे एम्बेरस फील हुआ कि
3: मुझे तो
0: मैं
3: ये भी लगता है
0: क्यों
3: रिद्धि, आपको उसके कहीं ओनर ने भी नहीं देख लियो ऐसे हाथ एकदम बांध के गए, हाँ अब बेटा तू लगा के दिखा ये भी हो जाता
0: कि ये चाबी लग तो नहीं रही, होता नहीं क्या स्टार्ट कर रही है। तो भाई ऐसे तो मतलब, और एक तो जल्दबाजी में वो, फिर बाद में हंसी आती कि यार मैं सुबह सुबह क्या कर रही थी। ओ
3: बिल्कुल
0: भाई,
3: बिल्कुल
0: तो
3: फनी।
0: अभी हमारे अगले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
5: हेलो जी, नमस्ते, वेरी गुड
3: नमस्ते,
5: इवनिंग
0: गुड इवनिंग
5: आपको, नितेश भैया को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी।
3: जी जी
0: दिनेश जी, आपका
3: नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत ज्यादा
5: बिल्कुल
0: फनी।
5: बहुत सारे इंसिडेंट हुआ मैडम। बचपन तो बचपन होता मैम, कि कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था, कहाँ आ गए समझदारी के बंधन में, वो नादान बचपन कितना प्यारा था।
3: वाह क्या बात कही है दिनेश जी आपने।
5: तो बचपन की एक बात है कि जब बारिश हुआ करती थी ना, तो हम सारे बच्चे, हमारे एक ग्रुप हुआ करता था, टोली, हम सारे बच्चे साइकिल लेके या फिर पैदल ही ऐसे मतलब कपड़े उतार के गली में दौड़ते थे, है ना। और जमा जब बारिश होती थी, जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता, तो हम वहां से जैसे भी कोई गाड़ी वगैरह निकलती ना तो
0: हाँ
5: पानी वो उछलता था,
0: हाँ
5: तो हम ऐसा मजाक करते थे कि वो पानी उछलता था, ये जो ड्रेनेज वाला पानी था, जो गंदा पानी था ना, वो जो जितने भी गुजरने वाले थे उनसे भी डालते, बारिश का मजा आप भी लो। अरे भाई वो कहते क्या, हम तो ऑलरेडी भीग ही रहे, आप क्यों भिंगो रहे यार गंदे पानी से, नहीं नहीं आप मजे। तो वो हमारी क्या बदमाशों की मतलब ये टोली थी, तो आज भी जब लोगों मिलते तो हंस पड़ते यार, कि तुम उस जमाने में कितने बदमाश थे यार।
0: ये तो चीजें अच्छी होती सर, ये यादगार लम्हे होते हैं बचपन के और हमेशा इनको
5: यादगार
0: याद
5: लम्हे
0: रखना
5: होते
0: चाहिए। अब तो बहुत कम हो गया, पर हाँ आपने इस समय को जिया है तो बहुत ही
5: स्कूल भी
0: खूबसूरत
5: जाते थे
0: बात
5: ना,
0: है।
5: तो स्कूल में भी ऐसे ही वाक्य हुआ करता था कि स्कूल मतलब खुद मतलब जब वो होमवर्क जैसे कि देते थे, कॉपी लेनी किसी से, नोटबुक लेके फिर होमवर्क करना, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जो सर या मैम समझा रहे हैं तो समझना नहीं, और जो लिखा रहे तो लिखना नहीं, फिर नोटबुक लेनी। अब नोटबुक लेते तो वैसे हमारा तो काम हो ही नहीं रहा है, अब वो जो दूसरा क्लासमेट है या

0: स्टूडेंट, उसका भी काम पेंडिंग में चला जाता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: वो भी डंडे खाता।
2: आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी प्यारी कहानी थी। थैंक यू। तो विकास, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा फनी हुआ है? मतलब एक तो होता है कि किसी और के साथ हुआ, और एक होता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो।
1: बिल्कुल यार, मेरे साथ तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एक बार आपने बताया अपनी स्कूटी से जुड़ा हुआ किस्सा, तो मुझे भी ऐसा याद आया कि मैं एक बार हड़बड़ी में निकल रहा था घर से। तो कहीं पे जाना था मुझे, तो मैंने क्या किया, गाड़ी में चाबी तो डाल दी लेकिन उसको ऑन नहीं किया, वो ऑफ ही थी चाबी, ठीक है, और मैं किक पे किक मारे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही है, तो एक बार ऐसे टंकी हिलाई थोड़ा, जैसे हम हैंडल हिलाते हैं ना कि यार पेट्रोल भी बज रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। फिर एक बार आपने सेल्फ भी लगाया, मतलब कभी ऐसा होता है कि आप उस मोमेंट में होते हो, फास्ट मोड में होते हो, कि आपको पता नहीं चलता है कि यार चाबी पे ध्यान ही नहीं जाता है, तो बार बार मारा। फिर 5 मिनट बाद देखा कि यार एक बार चाबी ऑफ करके ऑन करो,
2: चाबी तो ऑफ
1: तब
2: है।
1: मुझे वो चीज़ पकड़ में आई, कह रहे यार चाबी ही ऑफ थी। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट है। एक दो बार मेरे साथ ये भी हो गया कि मैं सेम जैसे कि चार्जिंग पॉइंट में मैंने अपना फ़ोन लगा दिया,
2: अरे ये
1: ठीक है,
2: तो
1: जल्दबाजी
2: रोज का
1: में
2: होता है यार।
1: बिल्कुल, और वो स्विच ऑन ही करना मैं भूल गया, बताओ आप। जब मैंने आधे घंटे तक, मतलब मैं खाली टाइम में ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ यार फ़ोन चार्ज हो रहा है, ठीक है, मैं अपना काम निकाल लूँगा, मेरे पास, मतलब वो एक पूरा माइंड में पूरे थॉट्स होते हैं ना, वो हम क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ शाम तक मुझे चार्जिंग, वो कहता है ना, उस पर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जब आधे घंटे बाद देखा तो लगता है मेरे सारे ड्रीम जो है वो वहीं पर ही बिखर गए उस चीज़ को
2: सारे प्लान्स
1: देखकर ही।
2: वापस रीस्केड्यूल करने पड़ते हैं
1: बिल्कुल
2: जब आप अपना
1: बिल्कुल
2: चार्जिंग का प्लग ही ऑन नहीं करते। ये तो
1: बिल्कुल सही
2: शायद सबके साथ होता है। खुद का फोन तो
1: बस।
2: छोड़ो, आपने किसी और का फोन लगाया हो चार्ज में, तो भाई जो दुआएं उनके मुंह से निकलती है उसको तो वो
1: वो काफी
2: खूबसूरत होती है, वो
1: बिल्कुल
2: बताने लायक भी नहीं होती। तो दोस्तों, आप भी बता सकते हैं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो। नंबर हम बार बार दोहरा रहे हैं जो कि है 02912555330, दूसरा नंबर है 2554300। तो आप इंजॉय कीजिए और साथ में गानों का मजा लेते रहिए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: विकास, जहाँ पर मस्ती मजाक की बातें चल रही है, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि अब मौसम जैसे जैसे बारिश का आ रहा है, तो सब लोगों के जीवन में खुशियां तो आने वाली है, क्योंकि बारिश किससे नहीं पसंद। पर इस मौसम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है खुद का ध्यान रखना, क्योंकि अभी जैसे जैसे मौसम और बारिश का होगा, तो वो जो ड्राइविंग वाले जो पैशनेट लोग होते हैं, जिन्हें गाड़ी तेज़ चलाने का शौक होता है, और जो होता है ना, बारिश आ रही है भाई, लॉन्ग ड्राइव पर निकलो, उन्हें जो मज़ा आता है, इसमें मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हेलमेट पहन के निकलिए, और जहाँ पर भी आप जा रहे हैं सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो हमारे सड़कों की खूबसूरत कंडीशन है, उसमें आपकी गाड़ी कहाँ गिर जाएगी, कहाँ पानी भरा है, आपको नहीं पता पड़ेगा। सो हाँ, मौसम एंजॉय कीजिए, पर साथ में अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाँ पर किसी की गलती नहीं होती, सड़क की गलती होती है। तो हाँ, खुद का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, और साथ ही में जो अभी बारिश का मौसम है, इसमें आपके पास अच्छा मौका है कि आप पर्यावरण के लिए भी अच्छा कर सके। आपको सिर्फ कुछ नहीं है, आपके घर में जो भी बीज होते हैं, आम की गुठली हो गई, जामुन के बीज हो गए, तो आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें स्प्रेड कीजिए। आपको एफर्ट नहीं डालने, नेचर अपना काम खुद ही कर लेगा। बाकी आज बातें तो चल ही रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ कुछ जीवन में काफ़ी फनी हुआ हो, या ऐसा जो आपके आपको लगता है कि दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला पाए, तब बता दीजिएगा। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं हमारे ट्रैक्स।

0: शुदा, अभी तो फुटबॉल का भी सीज़न चल रहा है, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद मिडनाइट वॉचिंग इसकी करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि जितने भी मैच होते हैं वो शायद 3 बजे स्टार्ट होते हैं रात को, क्योंकि
1: इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग.
0: हाँ, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग. और अक्सर ये हुआ है जब मैं स्कूल में थी विकास, तो बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि उस वक्त ये तो नहीं होता था कि कल ऑफिस जाना है, सुबह स्कूल ही तो जाना है, तो
1: बिल्कुल
0: बस
1: बिल्कुल.
0: ये सोच के हम रात को मैच देखा करते थे. और क्या मजा आता था भाई, जो घर वाले डांटते थे कि अरे इतनी लेट हो गई, मैच देखना जरूरी है, पर जो
1: बिल्कुल सही कहा
0: फुटबॉल का
1: आपने,
0: क्रेज.
1: फेवरेट प्लेयर को जो है वो चीयर्स करते हुए हम देखते थे.
0: हाँ, और जहाँ पे वो एक होता है ना कि पहले आपको क्रेज ही नहीं है किसी चीज़ का, फिर आप एक बार
1: बिल्कुल
0: देखना शुरू करो, फिर ऐसे एडिक्ट हो जाओगे आप जो आप उसको छोड़ नहीं पाते. तो भाई फुटबॉल देखने के भी दिन अलग थे. अभी भी कई बार लगता है कि यार रात को 3 बजे मैच आने वाला है, बट वही दुनियादारी, ऑफिस, सुबह उठने, फिर काम, और ये इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि देख नहीं पाते. बट हाँ, अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि फुटबॉल के मैच में वापस देखना शुरू करो. आप देखते हो फुटबॉल के मैच?
1: बिल्कुल, कभी कभी जैसे कि आपने बोला कि वक्त मिल जाता है तो देख लेता हूँ. लेकिन वैसे मेरा फेवरेट गेम अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट है. लेकिन हाँ, फुटबॉल में कुछ ऐसे मेरे फेवरेट प्लेयर्स है, या मैं कह सकता हूँ जो टीम्स है, तो उनके मैचेस मैं देखना प्रीफर करता हूँ.
0: अभी
1: मोस्ट ऑफ
0: तो
1: मेरे
0: अभी
1: साथ ये
0: देखते
1: रहता
0: हैं
1: है.
0: कि फिनाले में कौन सी टीम्स आती है, और ऑब्वियसली वो जब मैच आएंगे तो कोई स्कोप नहीं है उन्हें मिस किया जाए.
1: बाकी अगर
0: हाँ
1: देखा जाए तो फुटबॉल का जो हर मैच है वो बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही कहते हैं ना क्रेजी टाइप का रहता है, कि वहाँ पे
0: क्रेजी
1: आपको
0: होता है ऑब्वियसली. वहां पर ऐसा होता है कि अगर कोई टीम ने अगर गोल कर दिया है, और मतलब बहुत लंबा गैप चल रहा है, 2-3 का
1: बिल्कुल
0: गैप नहीं
1: बिल्कुल
0: है, और मतलब 0-4 के हिसाब से चल रहा है या फिर 3-0 के हिसाब से चल रहा है, तब तो लगता है कि हाँ टीम डेफिनेटली एक साइड से मतलब सिंगल विन
1: बिल्कुल
0: टीम दिखती है. बट कई बार मैच ऐसे होते हैं जो 1-2 का स्कोर चल रहा है और लास्ट मिनट आते आते किसी ने इक्वल कर दिया स्कोर, फिर जो
1: बिल्कुल.
0: एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होता
1: फिर
0: है,
1: जो रोमांच होता है हमारे मन
0: हाँ,
1: के अंदर की, नहीं अब
0: फिर
1: क्या
0: जो
1: होगा. हाँ
0: एक्स्ट्रा टाइम
1: बिल्कुल
0: स्टार्ट होता
1: बिल्कुल,
0: है, +9 +10 ऐसे मिनट ऐड होते रहते हैं, और फिर लगता है वो मैच कब खत्म होगा,
1: अब गोल
0: फिर
1: होने वाला है, अब गोल
0: पेनल्टी
1: होने वाला है,
0: शॉट्स कब
1: ऐसा लगता है.
0: होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, तो जितने भी हमारे श्रोता है, अगर आप भी हमारे भारत में, हम कह सकते हैं कि क्रिकेट तो ऐसे होता है ना कि ये तो
1: बिल्कुल,
0: है ही है,
1: रग रग
0: इसकी
1: में बसा
0: फैन
1: हुआ है वो
0: फॉलोइंग है.
1: कहते थे.
0: बट हाँ, अगर आपको कोई नया स्पोर्ट अपनी लिस्ट में ऐड करना है

0: आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको कनेक्ट करके रखेगा, उससे आपको एडिक्शन हो जाएगा, तो ज़रूर से फुटबॉल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फिर बाद में काफ़ी साल बाद आएगा, तो ऑब्वियसली अभी जो टाइम चल रहा है जब क्वालिफायर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ज़रूर फुटबॉल देखिए, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर स्पोर्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, सिर्फ एक पे ही जो होता है ना कि एक फोकस है कि हाँ क्रिकेट है तो और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट की
1: बिल्कुल
0: बात तो अलग ही है, बट इसके अलावा फुटबॉल है, लॉन टेनिस है और
1: बैडमिंटन है,
0: हॉकी है, बैडमिंटन,
1: बिल्कुल।
0: टेनिस, ये सब देखने लायक स्पोर्ट होते हैं, इनको भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि
1: और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चेस है वो बहुत ही
0: हाँ, चेस,
1: यूनिक गेम कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल, चेस को भी आप जो मैचेस होते हैं उसमें एंड मोमेंट तक जो होता है ना कि एक पॉइंट बना रहता है कि अब क्या होगा, कौन जीतने वाला है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: और मैं मान सकता हूँ एक तरीके से वो माइंड गेम है कि आप सामने वाले की चाल समझ सकते हो कि हाँ आप सामने वाला क्या चाल चल सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो एक प्रिडिक्टेड गेम हम उसको बोल सकते हैं कहीं ना
0: हाँ,
1: कहीं।
0: और हमारे भारत में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स में
1: बिल्कुल
0: हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एकदम बराबर वाली जो क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है या फिर जो क्रिकेट का सपोर्ट है वो उन्हें नहीं मिलता। तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे
1: बिल्कुल
0: स्पोर्ट्स अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं और उन्हें भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो हाल फिलहाल तो फुटबॉल की और स्पोर्ट्स की बातें हो गई, आपके
1: बिल्कुल।
0: जीवन में भी
1: तो
0: कुछ ऐसा चल रहा हो जो लगे आपको कि नहीं, अभी तो कुछ बहुत फनी हो गया है जो शेयर होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए, तो आप
1: बिल्कुल,
0: ज़रूर से हमें बता सकते हैं
1: और
0: हमारे।
1: साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को भी बता दो कि अगर जो हमारा संडे स्पेशल उनकी फेवरेट टीम का मैच है तो वो भी मुझे लगता है कि आज एंजॉय करने वाले हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और संडे है और ऐसा मैच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो
1: बिल्कुल
0: आप ज़रूर से बताइए अगर आपके पास कुछ बातें हैं फनी सी, तो हमारे नंबर हम बता देते हैं जो कि है 02912553300, दूसरा नंबर है 2554300।

0: आज का जो हमारा प्रोग्राम था रिद्धि, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया हमारे लिसनर्स को, और साथ ही साथ हमने देखा कि काफ़ी सारे कॉल्स भी हमें रिसीव हमने किए हैं, और जहाँ पे लोगों ने अपने यूनिक यूनिक जो किस्से हैं, चाहे वो स्कूल से जुड़े हुए हो या फिर किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए, वो हमारे साथ शेयर किए।
1: हाँ, ये तो था विकास, आज मज़ा बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि ऐसे किस्से सुनने में मिलते तो लगता है कि यार दुनिया में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हम मिस कर देते हैं आम जीवन में। पर हाँ, अपने आसपास जितनी भी अच्छी चीज़ें हो, यही आशा है कि आप सभी उसे ऑब्जॉर्व करते रहें, और जो भी छोटी सी भी खुशी मिले तो उसे अपने पास समेट लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, यही मिलकर हमारे जीवन को बड़ा खूबसूरत बनाती है।

0: तो श्रोताओ, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। सुना है कि आपने बहुत सारी जो हमसे क्वेश्चन है वो सुने, और ऐसा लगता है साथ ही साथ कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम रहा है रिति हमारा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ यही आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मौज मस्ती के साथ। इस गाने के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: स्तुति सहायक।
1: अभी आप सुन रहे थे युववाणी, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी और अंग्रेजी समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh today met a delegation of Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, and affiliated employees organizations to discuss

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, जिसमें आप सुनेंगे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारा लोकप्रिय ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज शामिल रहेंगी गांव देहात की ताजा गतिविधियां, खेती बाड़ी से जुड़ी चर्चा और कुछ मधुर लोक सुर। इसके बाद 7:30 पर ICC विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

सुबह की शुरुआत होगी सकारात्मकता से भरे कार्यक्रम नमस्कार के साथ, जो 8:30 पर प्रसारित होगा। इसमें रहेंगी दिन भर की उपयोगी जानकारियां, मौसम का हाल और समाचारों की झलक।

दोपहर के समय 1:05 पर किसानों के हितों पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा, जिसमें कल चर्चा की जाएगी कंपोस्ट अपनाएं मृदा स्वास्थ्य बढ़ाएं विषय पर।

इसके बाद 1:15 पर सुनिएगा राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा सुंदर लोक कार्यक्रम गणगौर।

2:30 पर आप सुन पाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम, जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। शाम का समय रहेगा युवाओं के नाम, 5 बजे प्रसारित होगा युववाणी। शाम की लय को आगे बढ़ाते हुए 7 बजे सुनिएगा चौपाल, और 7:30 पर सीमा डेरी गूंज, जहां आप सुनेंगे ज्ञान विज्ञान की बातें, मौसमी जानकारी और लोक भजनों की मिठास।

फिल्म संगीत कल सुबह सुने जा सकेंगे 6:45, 11:00, रात्रि 8:00 और 9:30 पर और 10:30 पर, जबकि सुगम संगीत का साथ मिलेगा सुबह 10:30, दोपहर 12:30 और रात्रि 9:15 पर।

तो ये थे आकाशवाणी जोधपुर संसदीय चैनल के आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है देश की मिट्टी से जुड़े कार्यक्रम देशगान का।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे देशगान। वक्त है संस्कृत समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: ललित मोहन तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तेनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारम्भात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्येभ्य 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण सम्बद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पाण्डवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्त संचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अन्तिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्यां स्पर्धायां इंग्लैंड दलं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह

0: भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात कच्छ कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा चेतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिवसेषु मध्यभागे उत्तर अरब सागरस्य कतिपयेषु भागेषु गुजरात प्रान्ते तथा च हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेश्च प्राविट स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अद्य ऋतु विज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखण्ड चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन साकमेव आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु दिल्ली उत्तरप्रदेश पंजाब च चंडीगढ़ क्षेत्रेषु विकीर्ण रूपेण वृष्टेः संभावना प्रकटिता। विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश झारखंड केरल माहे मराठवाड़ा देशस्य उत्तर पूर्वी भागेषु सहैव उत्तरांतर कर्नाटक तेलंगाना क्षेत्रं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानं विहितम्। राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट सत्रम् अस्य मासस्य विंशतिः दिनांकतः आरप्स्यते यत् च अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभमाणा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक सम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य षट् दिनांकतः जुलाई मासस्य अष्ट दिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिक सहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैण्डदलम् ऑस्ट्रेलियादलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले सम्पूर्ण स्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्ति स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलियादलेन वेस्टइण्डीजदलं पराजित्य अपि च इंग्लैण्डदलेन दक्षिणाफ्रीकादलं पराजित्य अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्य इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारम्भात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का, जिसे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबूराज में विधि मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की

0: मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी रामजी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमोर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमोर्ज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
2: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि

0: कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
1: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालटाल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुकाछिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभागों के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
2: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में 2 पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। 2 पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केन्द्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

0: सरकार ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोड़ी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने एमएनआईटी में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सबके लिए, सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ बीसी राय की स्मृति में मनाया जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया।

0: सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रूपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु दो दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव अर्चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा, अब है समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रूपया री मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथे वीबीजी रामजी योजना मारे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कयो के आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करियो जा सके। वणा कयो के मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो बखत लाग्यो हो, जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान कयो के वीबीजी रामजी योजना रे तहत मजदूरी दरामाए औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी करी जी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होरमूज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करियो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना माए कयो है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करियो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहां खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिन रे तहत सरकार ने देश माए उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी रे आवंटन माए प्राथमिकता देने री इजाजत ही। होरमुज जल डमरू मध्य सु एलएनजी री खेप माए रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च माए आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करियो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड रे मुंडावर माए 24 करोड़ रूपया रे विकास कामारो उद्घाटन करियो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करियो। इन मौके माथे वणा कयो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा खेतर माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियां रो ओ सपनो पूरो करियो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कयो के इनसु प्रदेश रे सूखा प्रभावित खेतरां ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री वठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमां माए भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापना माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रे प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एड़ी विषय वस्तु ने बधावो देवण और इंडरी पहुंच ने सोरो बनावण वाला सगला विज्ञापना और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी

0: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सू 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांग्यू है। सरकार इन बात री समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशारो अनुपालन करो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूनारे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इनसू पहले मंत्रालय वहां रिपोर्टारो संज्ञान लियो हो जिका माए कयो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बढ़ावो देवे है और अहलकारा ने मेटासू जवाब मांगने रा हुक्म जारी करया है। ए खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रहा हो। सिरोही जिले रा आबू राजरा ज्ञान सरोवर माए विधि और न्याय मंत्रालय री कानी सू 2 दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो व्यो। समापन सत्र माए संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो के एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सू कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कयो के ए शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण माए महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करे। श्री मेघवाल कयो के शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करियो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सू आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखीजा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगा रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जानो है। मीडिया सू बात करता थका केंद्रीय मंत्री कयो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभां रो भी जिक्र करियो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायात्री समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ खेतर माए आज सुवारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जना री मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जना गंभीर रूप सू घायल वे गया। हादसा रे पाछे हाईवे माथे कुछ वक्त खातिर यातायात प्रभावित रियो। ओ हादसो सूरतगढ़ सदर थाना खेतर माए 22 LGW रे कन्हव्यो। गंभीर घायला ने तुरंत सूरतगढ़ रे राजकीय सफाखाना पहुंचायो गयो। और अब मौसम प्रदेश माए जठे एक कानी कई जिला मानसून री बिरखा सू तर हो रिया है वठीने दूजी कानी कई जिला बरसात री उड़ीक कर रिया है। राजधानी जयपुर माए सुवारे सू चाल री बादला री लुका छुपी रे पाछे दोपहरा माए कई जगहवां तेज और कठी कठी हल्की बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए सुवारे झमाझम बरसात हुई वठीने हनुमानगढ़ माए भी जिला मुख्यालय समेत भादरा संगरिया और पल्लू खेतर माए तेज बिरखा दर्ज करी जी। पाली और आसे पासे रा खेतर माए चोखी बिरखा होने सू काश्तकार खरीफ फसल री बुआई री तैयारियां शुरू कर दी है। उदयपुर माए सिंजा हुई मूसलाधार बिरखा सू शहर रा कई इलाका माए पानी भर गयो। बठीने बालोतरा और सिरोही जिला माए सुवारे सू उमस और गर्मी सू जनजीवन घणो प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य रा पूर्वी भागा माए आवता 5-6 दिना माए मानसून सक्रिय रहने और घनकर थोड़ा माथे हल्की सू मध्यम बिरखा और कठी कठी भारी बिरखा री आस है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान माए काले सू भारी बरसात री गतिविधियां माए और बढ़ोतरी हो सके है। आज लगे टके सगड़ा संभागा रा जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट है। भरतपुर रा विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए प्रवासी परिंदा ने देखने खातिर आ दिना घनी तादाद माए पंछी प्रेमियारो आणो जारी है। माणा खबर नवीस बतायो के पंछियां रा आकर्षक समूह सैलानिया ने रोमांचित कर रिया है।
2: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं

0: वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: अमरनाथ यात्रा रा पहला दो दिन माए 32,313 श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदर माए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुओं रो चौथो जत्तो आज सुवारे जम्मू रा भगवती नगर निवासों यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहन माए 6,731 श्रद्धालु भेड़ा है। इन माए सू 4,032 श्रद्धालु 139 वाहन माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जदके लगे टके 2,000 श्रद्धालु 152 वाहन माए बालटाल मार्ग री तरफ सू जा रिया है।

0: तेरा श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदरमाए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुओं रो चौथो जत्तो आज सुवारे जमूरा भगवती नगर निवासू यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहना माए 6731 श्रद्धालु भेड़ा है। इन माए सू 4032 श्रद्धालु 149 वाहना माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जबकि लगे टके 2000 श्रद्धालु 152 वाहना माए बालटाल मार्गरी तरफ सू जा रिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री कानीसू राखी जी लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर माए 2 पारियां माए हुई। परीक्षा रे सफल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन खातिर प्रशासन सगली तैयारियां करी ही। 2 पारियां माए राखी जी आ परीक्षा सुवारे 9:30 बजे सू दोपहरा 12:30 बजे ताई और दूजी पारी माए दोपहरा 3 बजे सू सिंजा 6 बजे ताई हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भारत में लीवर री बीमारी और टाइप 2 मधुमेह सू निपटने रे खातिर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने रो हेलो करियो है। नवी दिल्ली में लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क री तीजी वर्षगांठ में डॉक्टर सिंह कहो कि ए रोग अबे पहली री तुलना में कम उम्र रे लोगों में भी देखा जा रहा है। वणा कहो कि देश री जेनेटिक बनावट पेट रे आसे पासे चर्बी री 32 समस्या और भारतीय री शारीरिक बनावट रे कारण लोगा माए मधुमेह फैटी लीवर और हृदय रोग रो खतरो बत्ती है। डॉक्टर सिंह कहो कि वैज्ञानिक तरक्की रे साथ है बड़े पैमाने माथे जन जागरूकता और व्यवहार माए बदलाव सू इन चुनौती रो निपटो जा सके है। और आखिर माए खास समाचार एक फिर सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रूपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सू आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज माए विधि मंत्रालय री कानीसू 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। अर राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखासू तरबतर आज घणकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठाई पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं। पेश है चौपाल, इस कार्यक्रम के प्रायोजक इफ्को।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
3: साथीड़ा, सांझ रो वक्त है और आपने रे वह उड़ीक शामरा 7 बजे रे 7 बजी है और आप रो प्रोग्राम चौपाल लेर हाजिर हूँ। मैं आप रो साथी दीनदयाल शर्मा।

काला काला बादलाने देख और मन रो मयूर जी की भात हरके है दोस्ता। बिन बीरी जी की वर्णन री बात करा आपा तो कहवे के गिरा अनैन नयन बिनु वाणी। तुलसी बाबा की हो कोई टाइम रे मायने के वाणी है तो नजर नहीं है और नजर है तो वाणी नहीं है, आ बात वास्ता उन्हें मायने आ जाया करे। तो आओ साथीड़ा इन बिरखा रो ए काली कढ़ाइन रो स्वागत करा आपा गीत संगीत रे सागे।

साथीड़ा काली कल्याण उमड़ आई है और इन सागे जी को है किणी भांत हर कालजारी कोड ने एक तसलीरो भाव मिलियो है। बरसात आवे जद सभारा चेहरा माते हरखे और सब मोटी बात आ है कि जीवन री और जिंदगी री जी की जोश री बात है वह परिभाषा पूरी करे बरसात। राजस्थान री धोरा धरती माते बरसात रो मजो ही कुछ और है और साथ ही साथ उन्हों महत्व भी बहुत बढ़न आवे साथे।

साथना गांव में गवाड़ में चारा कनी खुशी रो माहौल है और छोटा छोटा नाना नाना टाबरिया जी का है नी बे बरसात रे साथे उछलता कूदता खेलता कादा कीचड़ में रमेश थोड़ा अपने आप ने खुशी रो एक ऐड़ो अवसर देवे है एक ऐड़ो मौको देवे है कि जिनने भुनौन रे वास्ते दुनिया भर री तमाम दौलत कम पड़ जावे। शायर की तो खूब लिखियो हो कि वो बचपन की जो बातें हैं वो बातें वो बारिश का पानी वो कागज़ की कश्ती वास्तव में अपने आप में एक ऐडी भावना है साथीना जिन भावना री कालजारी कोर तक कोई पहुंच नहीं सके आसानी से।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: साथीड़ा, आप सुन रहे हो इफको सु प्रायोजित कार्यक्रम चौपाल। चौपाल जमी है आपानी हथियारी और आप हथियार करता साथ साथ जानकारियां री भी बात करिया करा, गीत संगीत और मनोरंजन री भी बात करिया करा और साथ ही साथ करिया करा ऐडी बातें जिके वास्तव में कटे न कटे अपने वास्ते बहुत फायदेमंद है और जानकारियां साथ साथ वे जीवन में अपना योग्य बातें हैं। तो दोस्तों, आप जी की बात करी कि भाई होद रे मायने, टैंक रे मायने आपने जल रो संग्रह करना है बरसात रे पानी रो, ताकि वो पानी व्यर्थ नहीं बहवे और साथ ही साथ जल री एक एक बूंद ने बचा और आप काले रो भविष्य सुरक्षित कर सका। इन साथ ही साथ एक सगला सु मोटी बात आ है दोस्तों कि इन बातों आपने आज सीख मिले कि हर चीज री कीमत है, क्योंकि बूंद बूंद घड़ो भरी जाया करे और घड़ा घड़ा सु होद भरी जाए। तो इन वास्ते इन काम ने आजू बल्कि अबारों शुरू करना है।

मायने बैठ जावे, हृदय मायने बैठ जावे और हमेशा हमेशा रे वास्ते बिरा मस्तिष्क राजी का न्यूरॉन्स है बिरा मायने एड़ो सेट होवे कि वो कदी भूल नहीं सके। वास्तव ने मायने आँख्यारे मायने झलक तोड़ो जी को प्रेम है मारो, वो प्रेम काल जा रे मायने जिन टेम बरसे तो निश्चित रूप से लागे कि वास्तव में कई बात आई है, कई जिंदगी री सौगात आई है। आओ साथी ना एक प्यारा सा गीत रे साथे बढ़ा आगे है।

0: सथायड़ा हथाया तो हो गई है घड़ी और अबे घड़ी री सुइया ए कह रही है टिक टिक कर तोड़ी के टाइम हो गयो है कार्यक्रम रो पूरो। तो आज रे चौपाल सु दीजो सीख दीनदयाल शर्मा ने। राम राम।
1: कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको। श्रोता आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आइए अब सुनते हैं आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का सीधा प्रसारण।
3: फर्स्ट बॉल 20।

हम से स्टूडियो में करने वाले हैं, स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट लॉट मोर टू टॉक।

इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आरके वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिरसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
1: आया साहब, आया साहब।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
0: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है?
3: आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज साहब को भी तो जल्दी तैयार होना है।
3: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
3: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
3: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
3: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
3: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
3: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ। मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ? तुम दवा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
2: साहब जी।
3: हा? तुम अभी तक यही हो
2: साहब?
3: क्या है
2: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
3: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
3: क्यों?
2: वो साहब

0: इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
0: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे।
1: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है,
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी।
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब, जरा सोचो।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है।
1: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डाली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों फिर तुम? मेरा मतलब, मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाद देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला शाब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर, मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ, और 10 बजे से पहले ही रखो चाय।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके?
4: खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: अरे इसमें हंसने की क्या बात है,
5: दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है।
1: बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर
0: आया साहब, आया साहब।
6: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है।
6: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
6: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
6: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
7: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
7: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
7: नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
7: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी, हीरा साहब को सलाम भी करोगी, सलाम करो।
3: सलाम साहब।
1: सलाम।
3: सलाम मैम साहब।
8: सलाम।
3: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने अभी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
7: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
3: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
7: होटल में साहब?
3: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
0: मैं अभी लाता हूँ साहब।
3: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
7: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी

0: तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब?
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
2: ए जी बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा
3: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
0: अच्छा साहब आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
2: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
1: क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
0: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गाँव का है साहब।
1: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
1: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना, ना, ना।
1: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
0: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
1: वो तो नजर आ ही रहा।
0: क्या मतलब साहब?
1: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
0: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकश नहीं, घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
1: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
0: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
1: हाँ हाँ क्या बात है?
0: तुम्हारी बात का साहब।
1: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
0: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये के
2: मैं, जी मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
0: चल तू बोल दे साफ साफ।
1: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
1: मुझको?
0: जी
1: बोलिए बोलिए क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब, आप शादी कब करेंगे?
1: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
1: मेरी शादी क्या मतलब?
0: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
1: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
4: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
1: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
3: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब की, मेरा
2: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
3: बिल्कुल ठीक।
1: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो, तो सब मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले फिर बहादुर की शादी हो।
3: ये भी ठीक।
1: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
3: कभी नहीं हो सकता।
1: क्या नहीं हो सकता?
3: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
1: ये कोई जबरदस्ती है?
0: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
1: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग दैट्स द स्पिरिट।
0: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
3: अच्छा खबर नहीं बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
0: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
3: सलाम
0: साहब।
3: सलाम
0: मैम साहब।
1: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
4: हाँ साहब जाते हैं साहब।
5: ओह डार्लिंग आई एम सो हैप्पी।

0: सेलिब्रेट इन ए ग्रैंड स्टाइल। चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
1: गुड आइडिया। मैं बस गया और आया।
2: विम शाह जी, शाह किधर गया?
0: अंदर कमरे में तैयार होने।
2: अच्छा,
0: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
2: ये शब्द तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम शाह को रोज रोज समझाता था, शाह शादी कर लो, शाह शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था शाह तो, इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
0: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
2: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
0: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
2: ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
0: हाँ,
2: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
0: बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
2: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा के लिखे नाटिका भी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
4: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।
1: Yeah.

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन डी 3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का

0: जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है।

0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का

0: आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को

0: साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलाल पुरी ने, संगीत जयदेव का है

0: मीठी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है. फिल्म का नाम है कालीचरण. गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का.

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार करें।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1900

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसकी अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आज के मंगलकारी कमराज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
2: वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: मजेदार नहीं, असरदार।

अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।
1: इस

0: जब जब फूल खिले आनंद बख्शी कल्याण जी आनंद जी
1: रहा गर्देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा।
0: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसर जयपुरी शंकर जयकिशन। मेरे हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: ये FM सेंसिटिव है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा दिल्ली केंद्र से।
1: सूर्य नगरी चैनल है, वक्त है हिंदी और इंग्लिश न्यूज का।
2: देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 120,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील

0: होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: On the trophy. Two balls to come in the 16. Eccleston balls and...

0: because they've got nothing to lose at this stage taking a review. 140 for two it is, as the third umpire now will review where things have gone. And we'll wait and watch. Here's the replay. This could be tight, Vineet. It looks like it might well be umpire's call if the ball hasn't touched the bat. I think Mooney knows that she hasn't hit the ball. The expression on her face seems to suggest that. The replay is on. And we have to wait and see what the umpire's decision is going to be. 140 for two. Will she go to ultra edge? Probably.
1: पहले अंपायर को यही चेक करना है कि बैट से लगी है या नहीं लगी है, और उसी को उस इस समय अलग अलग एंगल से देखकर प्रयास कर रही हैं जानने का, और अल्ट्रा एज देखी जाएगी कि क्योंकि बैट के काफ़ी करीब थी गेंद, स्प्लिट फ्रेम में भी ये तय नहीं हो पाया, और अल्ट्रा एज की प्रतीक्षा की जा रही है, कुछ समय लगता है ये देखने के लिए कि अगर एज है तो फिर LBW नहीं हो सकती क्योंकि बैट पहले टकराया था। अपनी इनिंग्स को पेस करती इंग्लैंड, सबको अवसर भी नहीं मिला बैटिंग का। बैट के करीब गेंद आएगी अभी, और क्या उस पर डिविएशन है? ऐसा नहीं लगता कोई डिविएशन है। तब तक बैट पे पहुंच चुकी थी, तब अल्ट्रा में कोई डिविएशन नज़र आ रहा है तो बैट पे तो नहीं लगी। अब बॉल ट्रैकिंग पे दारोमदार है।
0: अंपायर्स कॉल कुड बी लाइकली बिकॉज दिस वाज फायर्ड इन बाय एकलस्टन। But she seemed very, very confident. Once the ball tracking comes on, we'll know. Everything running in slow motion, anticipation on everybody's face. And I think in their heart of hearts, everybody knows it's going to make no difference really to the result. The question is, will Mooney have to depart or will she continue? Three, four frames on our monitors here. Nat Sivabrunt, the England captain, Beth Mooney, the Australian batter against whom the appeal is, and the split frame of the third umpire's view. But this is taking far too long, as has often become the case now in international cricket, technology. But quick decisions is not something that technology is delivering, one has to say, except when it comes to the new ball. Now this will tell us, it's pitching in line, one red, two reds, three reds. Means Beth Mooney has to depart. 16 overs have been completed. It's 140 for three.
1: अच्छा, रेफरल लिया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, और ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही हो, क्योंकि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो बेथ मूनी खेल रही थी। बेहतरीन पारी, 49 गेंदों पे 64 रन, 10 चौकों की मदद से एकलस्टोन की गेंद पर LBW आउट हुई बेथ मूनी, और बहुत संभावना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच साबित होंगी। 140 पर ये तीसरा विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का, और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ। एक तरफा हो गया मैच, लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना। इट गेट्स ऑन योर नर्व्स, इतना आसान नहीं होता। क्रिकेट के जानकार, वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र आप पर होती है। ड्रेसिंग रूम ऊपर है, आपको लंबा रास्ता तय

0: करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। एशले गार्डनर क्या खिलाड़ी हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्मिथ बॉलिंग करेंगी, सामने है पैरी। पैरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है, तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं इस वर्ल्ड कप में। बॉलिंग नहीं की आज, मिडलर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था। अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है, हालांकि वो रेफरल में काफी समय जाया हुआ। गेंद काफी फुल लेंथ की थी, अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया था फील्डर्स के बीच में से, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।